0: You know what? अगर आप अपनी छोटी मोटी सी लाइफ के दिनों में भी छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज अट्रैक्ट करते रहते हैं तो आप भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आपकी भी लाइफ अगर चर्चा का विषय रहती है, लोग आपका जिक्र पीठ पीछे भी करते हैं, तो आप भी अपने एरिया के अच्छे खासे वो है सेलिब्रिटी और क्या। सो हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। सो मिस्टर एंड मिसेस और मिस सेलिब्रिटी, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी, देखिए बॉलीवुड में फरहान अख्तर डॉन 3 मूवी की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में बने रहे हैं, लेकिन अब कुछ मामला बदल गया है। हाँ जी, एक फुल ऑन ड्रामा मूवी के लिए ये सलमान खान से बातें कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है फरहान अख्तर एंड सलमान खान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको एक साथ नजर आए। तो चलिए, कुछ नया होते रहना चाहिए ताकि बोरियत जो है ना वो हमसे दूर रहे। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नूपुर आपके साथ।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन
2: जोश में रहो।
0: पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले सेलिब्रिटीज खुद क्या कर रहे हैं कभी आपने सोचा? नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका ही नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। नुकसान आजकल सेलिब्रिटीज का भी हो रहा है, अब वो उनकी खुद की वजह से हो रहा है या उनकी बीवियों की वजह से हो रहा है, ये बात का मैटर है। हाँ जी, रिसेंटली अपने जो विक्रांत मैसी हैं उन्होंने इस बात को कन्फेस किया है कि उनकी खुद की वाइफ जो है ना, वो 4 से 5 बार सोशल मीडिया की शिकार बन चुकी है। हाँ जी, सोशल मीडिया की शिकार, ऐसे कि उन्होंने कहीं पेमेंट दे दिया और उनका सामान नहीं आया। तो ऐसा इन लोगों के साथ भी चल रहा है। आप अकेले दुख मत मनाओ, दुख मनाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। मैं आरजे नुपुर, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो ऐसा है, सिंगापुर में रहते रहते वी ऑलरेडी रियलाइज्ड बहुत सारी ऐसी नॉस्टैल्जिक स्टफ है जिसे लेने के लिए, फील करने के लिए हमें इंडिया नहीं जाना है, हमें यहाँ ही मिल जाता है। और जो चीज़ें अक्रॉस द सिंगापुर नहीं मिलती वो हमें लिटिल इंडिया में मिल जाती है। मीनवाइल इंडिया में भी अब लोगों ने कह दिया है, सुनो कॉन्सर्ट्स के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो इंडिया में चल चल कर आ रहे हैं लोग, राइट? सो अगर हम चेन स्मोकर्स की बात करें तो ये ग्रुप भी इंडिया पहुंचने वाला है। हाँ जी, काफी वक्त के बाद, मतलब ये जो है वो इंडिया आएंगे एंड ऑफ कोर्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में ये अपना फेस्टिवल लेकर जा रहे हैं। और अभी से ही एडवांस बुकिंग चालू हो चुके हैं। हाँ, मतलब ईयर एंड में, न्यू ईयर के अराउंड जो है ना, वो ये प्लान किया जा रहा है। बट अभी से ही इसका माहौल बना दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इंडिया में निकल कर आ रही हैं जो हमारे लिए सिंगापुर में बैठे बैठे भी एक्साइटिंग लगती है यार। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार, मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टक।
2: You know what? आपका टैलेंट ना ऐसे बैठे बैठे वेस्ट हो रहा है, क्यों ना इसका यूज किया जाए और बदले में बहुत सारे गिफ्ट्स लिए जाए, कैश प्राइजेस जीते जाए। तो देखो, चलते फिरते हम अपने ऑफिस स्पेस में अपना पूरा टैलेंट तो दिखा नहीं पाते, लेकिन अब ये टैलेंट आप दिखा सकते हैं। मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए ये मौका लेकर आए हैं। हाँ जी, द स्मार्टेस्ट शो दैट इज द लायन सिटी चैलेंज हम लेकर आ चुके हैं। ये एक गेम सेंट्रिक शो है, अलग अलग स्टेजेस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन अभी आपको पार्टिसिपेट करना है, राइट? पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्विकली हमें मैसेज टाइप करके भेजना है लायन 9151896 पे। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और सामने से पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए उतने ही टाइम में जिसकी डिटेल्स आपको मैसेज में दे दी जाएगी। ओके, तो वहां पर आपके जवाब का, आपके रजिस्ट्रेशन का हमें इंतजार रहेगा। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: का फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

वो कहते हैं ना कि नकल करो तो अकल से करो, वरना तो महंगा पड़ सकता है। तो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि ये जो नकल वाली बात है ना, मुझे कहीं से याद आ गई। जब से AI टूल्स आए हैं मार्केट में, तब से हम हड़ाहड़ इतनी नकल कर रहे हैं और उसमें अकल भी नहीं लगाना चाह रहे हैं कि सामने वाला पकड़ ले रहा है कि अरे ये तो AI है। हाँ, सो रिसेंटली एक 3D मूवी इंडिया में रिलीज करी गई, हॉन्टेड 3D है ना, और उसको कहीं ना कहीं हॉरर मूवी की तरह बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। लेकिन जब लोग थिएटर्स में वो मूवी देखने गए तो हड़ाहड़ उसमें नकल नज़र आ रही थी कि भैया मेहनत कम, AI टूल का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। देखो, बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि लोग सोशल मीडिया पे इसे परफेक्ट तरीके से ट्रोल करने लगे कि भाई ऐसी मूवी ना देखने के बराबर ज़्यादा बेटर है, मतलब इनको देखकर कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आजकल लोग इतनी जल्दी ऑफेंसिव फील कर जाते हैं कि पूछे मत। या तो आप ना पहले ही उस मूवी को ऐसे प्रमोट करें कि भाई ये एक ऐसी मूवी है जिसमें अच्छा खासा AI टूल यूज किया गया है फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप पहले ही सरेंडर कर देंगे ना, तो शायद इतनी ट्रोलिंग ना फेस करनी पड़े। पर आज भी जल्दी समझते नहीं है डायरेक्टर्स। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: रहो। ऐसा होता है कि भाई आपको कोई गिफ्ट बहुत ही मतलब थॉटफुल गिफ्ट मिलता है ना, तो आप उसे कहीं ना कहीं फ्लॉन्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब आप उसे फ्लॉन्ट करते हैं तब चार लोगों से नोटिस भी कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं तो फिर उसका जिक्र निकल के ही आता है। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड रिसेंटली किसी के गिफ्ट को नोटिस किया गया है, और आप गेस कर सकते हैं किसके किसके किसके, भाई अंबानीज के गिफ्ट्स को। अंबानी ने अगर गिफ्ट दिया है तो क्या छोटा मोटा होगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। एंड यस, अगर मैं रिहाना की बात करूं तो रिसेंटली वो अंबानी के बुलाने पर उनके यहाँ फंक्शंस में पहुंची थी, इवेंट्स में पहुंची थी, लेकिन रिसेंटली रिहाना ने अंबानी का जो गिफ्ट है ब्रेसलेट 2.2 करोड़ डायमंड का वर्थ इट वाला जो ब्रेसलेट है वो सोशल मीडिया पे हल्का सा फ्लॉन्ट किया, और लोगों ने इसे हर तरह से सोशल मीडिया का हिस्सा बना लिया एंड जिक्र का हिस्सा बना लिया। तो भाई बड़े बड़े देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन हाँ हमारे लिए बड़ी बात यह है कि भाई हम आपको इतने बेहतरीन गाने सुना रहे हैं कि आप कहीं जाने का रिस्क ही नहीं उठा सकते। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: शोर सुन टकाटक,
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: एज इज जस्ट अ नंबर, ये मैं नहीं मोनी रॉय कह चुकी है और आप भी कह दो, मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे नहीं पढ़ना चाहिए, इतना क्या सीरियस हो रहे हो। हेलो हाय, मैं आरजे नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर हम टेलीविजन एक्टर मोनी रॉय की बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ले ही ली है और सोशल मीडिया पर ये दिशा पाटनी की सबसे बेस्ट फ्रेंड होने का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन रिसेंटली वरुण धवन स्टारर है जवानी तो इश्क होना है, हां जी, इसमें ये वरुण धवन की मॉम के रोल में नजर आई हैं। वरुण धवन की मॉम मतलब वरुण धवन की एज 39 है और मोनी की एज 40 है, मतलब एक साल का अंतर है, और उसकी मॉम नजर आ रही है। तो बड़ी ट्रोलिंग चल रही थी। तो बातों में इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, मतलब मोनी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्हें इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, कि मैंने उनकी एज की होती हुई भी मॉम का रोल अदा किया। भाई आर्ट है, आर्ट को आर्ट की तरह लेना चाहिए। ठीक है भाई, आर्ट को आर्ट की तरह लेंगे और गानों को गानों की तरह लेंगे। मैं आर्ट से ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।
4: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: कई बार होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं तो कह रही हूँ कई बार नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर पर आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो पूरी दुनिया में मिलती है। हाँ, इसीलिए आप घर से निकलकर बाहर जाना जल्दी प्रेफर करते हैं। और सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं यार। सो हेलो हाय, मैं आर जे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर मैं चॉइसेस की बात करूँ तो रणवीर सिंह के जो फादर इन लॉ हैं, उनकी चॉइस शायद रणवीर सिंह नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने बोल दिया है कि धुरंधर मूवी उन्होंने देखी जरूर है, लेकिन उसमें बहुत ही मार धाड़ है, बहुत सारा मतलब उसमें एक्शन सीन है, और शायद उनका वो चॉइस नहीं है। बट ठीक है, उन्होंने इनडायरेक्टली टैप तो किया है, बट ये भी नहीं बोला कि बहुत खराब है यार, ऐसा बोल भी नहीं सकते थे। और देखो, आर्ट को आर्ट की तरह ही लेना पड़ेगा। अगर आप उसे सीरियस लेंगे तो सबके लिए नुकसान है यार। चलिए, ऑन दिस नोट मैं आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ। अब मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
6: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
7: टाइम टू रेज द बार।
8: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, हाय, नमस्कार सिंगापुर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू माय प्यारे लिसनर्स? आज 24 जून है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द शो, जहां पर मैं आती हूँ लाइव आपसे मुलाकात करने रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर पे, मस्ती हैंग आउट, यानी कि सिंगापुर का एकमात्र रेडियो स्टेशन जहां पे हम ज्यादा करके हिंदी में बातें करते हैं, राइट? आपको पता है आज की डेट का एक लवली कनेक्शन क्या है? आज 24th ऑफ जून है, यस यू आर राइट, लेकिन आज है इंटरनेशनल फेरी डे। जी, वो लिटिल मैजिकल क्रिएचर्स, वो वाली फेरीज, ऑनेस्टली हम सबको ना कभी थोड़ी सी मैजिक अपनी लाइफ में चाहिए होती है, थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, राइट? क्या है ना कि आप देखिए, वो कुछ भी हो सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा अनएक्सपेक्टेड मैसेज ट्रैफिक में आपको पहुंचते, ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, या फिर किसी का बिना रीजन ध्यान रखना, टेक केयर, ऐसे बोलकर आगे निकल जाना। मेरे हिसाब से आज का प्लान हम बहुत सिंपल रखेंगे, लाइफ को थोड़ा लेस रश रखेंगे और थोड़ा और ज्यादा मैजिक क्रिएट करेंगे। अब आप चाहे ऑफिस से निकल रहे हो, एमआरटी में हो, घर का काम

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live. Hi hi, Singapore. घर साफ करते वक्त एक ना क्लासिक लाइन होती है और वो है, ये काम का नहीं है, बट फेंक भी नहीं सकते। मतलब ये इंडिया तो क्या, सिंगापुर सब जगह एक ही चीज होता है। ठीक है, कभी तो काम आ जाएगा, ये मॉम्स की फेवरेट लाइन होती है। और ऐसा करते करते वो इतना सामान घर में इकट्ठा कर लेती है, समझ नहीं आता ये काम कब आएगा, और कभी आता भी नहीं है, है ना। ऐसा बहुत जगह पे होता है, इंडियन मॉम स्पेशली, पर ये हर जगह होता है। क्या है ना कि अभी पिछले शो में अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि सिंगापुर में गार्बेज थ्रो करने के लिए भी जो स्पेस है वो ऑलरेडी काफी कम होती जा रही है। तो जब स्पेस कम हो और चीजें फिर भी आपके पास परफेक्टली यूजेबल हो, तब उसका नया वर्जन ढूंढना क्या एक स्मार्ट मूव होगा? एक्स्ट्रा चेयर, वर्किंग ब्लेंडर, बुक्स, ओल्ड टॉयज, या वो परफेक्टली फाइन लैम्प जो बस आपके कवर्ड में ऐसे जगह ले रहा है पड़ा हुआ, किसी और के लिए एग्जैक्टली वो चीज यूजफुल भी हो सकती है, राइट? इसी थॉट को ना रियल बनाया है सिंगापुर में एक ऐप ने। वो क्या करते हैं, वो अनवांटेड लेकिन वर्किंग आइटम्स को डायरेक्टली नेबर्स को गिव अवे कर सकते हैं आप इसके थ्रू। और अराउंड 1,20,000 यूजर्स जो हैं, प्लस और भी लोग जो हैं इनसे जुड़ रहे हैं और काफी सारी चीजें सेल कर चुके हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऐप और एनी ऐप, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीजों के लिए खुद आगे हो करके इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिकॉज व्हाट आई फील कि वो चीज जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हो सकता है वो किसी के लिए मोस्ट नेसेसरी थिंग हो, और हो सकता है किसी और की चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो। तो मुझे लगता है एज अ कम्युनिटी हमें भी सिंगापुर में आगे आना चाहिए, और जैसे कि वो गैजेट सेल्स होते हैं ना, वैसे हमको लगाना चाहिए कि भाई जिसके पास जो ऐसी चीज, ये नहीं आप कचरा उठा के ले आओ, पर ऐसा जो आपको लगता है कि आपके पास है पर आपके काम का नहीं, बट इट्स यूजफुल, आप उसको यूज कर सकते हो, उसको ले आओ बाहर, एड डिस्प्ले करो, और जिसको जो जरूरी लगे वो लो अपना और घर जाओ। इससे क्या होगा कि गार्बेज भी कम होगा एंड चीजों को रीयूज करने के ऑप्शन

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। अभी जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले बताया कि भाई ये चीज किसी के काम आ जाए, वो चीज किसी के काम आ जाए, तो मेरे एक सिंपल से थॉट ने आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज किया। हो सकता है ऐसे क्या होता है, कई बार लाइफ में कुछ सिंपल से क्वेश्चंस और उनके सिंपल से आंसर्स आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में कोई आंसर, एग्जाम में कोई आंसर, एंड देन वो मोमेंट जब टीवी पे कोई क्विज चल रहा हो और आपको कॉन्फिडेंटली सारे जवाब पता, आप सड़सठ सारे आंसर्स दे रहे हो। कोई ऐसा हो जो टीवी के बाहर बैठा हो अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, अपने इसी चेयर पर, वहां बैठ के कह रहा है, ओह आई नो दिस, अरे यार मेरे को पता था, काश मैं वहां होता तो दिस काश को सच में बदलने का वक्त आ गया। जी क्या है ना कि हमारे सिंगापुर में हम ऐसे मौके देते रहते हैं जहाँ पे आपके काश को हम सच में बदल दें। वैसे भी आज फेरी डे है, तो क्यों ना इसी को आपका फेरी बना दिया जाए, द फेरी मोमेंट आपके लिए। लाइन सिटी चैलेंज यू नो मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर के आए हैं। आप इस बार सोफे पर बैठ के आंसर दीजिए, लेकिन क्या पता वही तरीका आपको आपकी हॉट सीट तक ले जाए। सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर एक्चुअली नॉलेज विंस, ये प्रॉपर स्टूडियो गेम शो है, कोई एसएमएस वाला गेम शो नहीं है। यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर टॉपिक जो आपको चैलेंज लगता है, आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप जवाब देंगे और एक्साइटिंग प्राइजेस और कैश जीत सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज वन थिंग, अपना फोन उठाइए 9151896 पर LION क्लिक कर भेज दीजिए। जब आप ये करेंगे उसके बाद हम आपसे वापस बातचीत शुरू करेंगे। यू विल गेट टू क्वालिफाइंग क्वेश्चंस आगे के राउंड के लिए। उन क्वालिफाइंग क्वेश्चंस का सही सही जवाब अगर आप देंगे तो फिर आप आगे के राउंड्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, और एक पॉइंट पर आकर के आप अगर सब कुछ सही सही करते हैं, यू विल गेट अ चांस टू बी इन द स्टूडियो ऑन द हॉट सीट, और आप खेल रहे होंगे क्विज शो, समझे? तो चलिए, द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डू इज 9151896 पर LION लिखकर भेज दीजिए। ओ यार, समझ गए आप लोग।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Singapore, bored ho, game khelni hai, challenge accept karoge, excited.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
4: वाजी, क्या बात जी?
5: Order today from GG Mart, your personal grocer.

कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हाय सिंगापुर, फोन पर बैंक नोटिफिकेशंस आए और अमाउंट थोड़ा एक्स्ट्रा दिखे, मूड ऑटोमेटिकली वेरी मोमेंट आ जाता है, हाय किसने पैसे दिए, राइट? सिविल सर्वेंट्स के लिए जुलाई का जो नोटिफिकेशन है, इट्स गोना बी हैप्पियर, थोड़ा और हैप्पियर। द पब्लिक सर्विस डिवीजन जो है, उन्होंने अनाउंस किया है 0.4 मंथ मेरियर बोनस फॉर ऑल द सिविल सर्वेंट्स। जूनियर ग्रेड ऑफिसर्स के लिए एक्स्ट्रा वन टाइम पेमेंट भी अनाउंस किया गया है। MX131I और MX14 ग्रेड्स को 250 सिंगापुर डॉलर्स, वाइल MX15 यानी 15 और MX16 और ऑपरेशन स्कीम्स जो है उनके ऑफिसर्स को 400 सिंगापुर डॉलर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर इकोनॉमी ने फर्स्ट क्वार्टर में ना 3.9% ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया है, लेकिन साल के लिए GDP फोरकास्ट जो है वो 0-2% ही रखा गया है, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है ना वो भी काफी रियल, और आज के वक्त में तो हम देख रहे हैं कभी भी कुछ भी हो जाता है, यू नो। इसीलिए ये पे आउट रिवॉर्ड भी है और एक कॉशियस बैलेंस है आपके लिए, मतलब ये जो है इसको संभाल के रखो, या ये भी कह सकते हो ईयर एंड बोनस भी ले सकते हो, सेकेंड हाफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखकर जो डिसाइड होता है, हो सकता है ये भी हो ना। सी पब्लिक सर्विस में ना काम करने वाले लिसनर्स, जुलाई का कैलेंडर

की।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hi, welcome back. This is me, Mugdha. आप मुझे सुन रहे मस्ती हैंगआउट पर. This is Radio Masti 24/7 Live Singapore. सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन. बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस को एक बार क्यूटी पाई का टैग मिल जाए ना, तो उस इमेज से बाहर निकलना इज वेरी मुश्किल. वो बाकायदा एक पूरी फिल्म का प्लॉट तैयार करने जैसी चीज हो जाती है. लेकिन एक ऐसी फिल्म आई और एक ऐसा टीजर आया जिसने सारे पासे ही पलट के रख दिए हैं. श्रद्धा कपूर की फिल्म एठा का टीजर जो है वो रिलीज हुआ है, और उसको देखने के बाद लोगों ने श्रद्धा कपूर के लिए अपनी राय को बिल्कुल बदल दिया है. ये वो श्रद्धा बिल्कुल नहीं है जो ड्रीमी सीक्वेंसेस और गानों में आपको बड़ी प्यारी क्यूटी स्माइल के साथ, थोड़ी सी टीजिंग और फ्लर्टी स्माइल के साथ इधर उधर उछलती कूदती नजर आती थी. नहीं, एठा में वो बन रही है इंडिया के महाराष्ट्र की लेजेंडरी तमाशा और लावणी आर्टिस्ट विठा भाई, और टीजर में उनकी एनर्जी, उनके एक्सप्रेशंस, उनका घुंघरू के साथ स्टेज पे आना, दैट रॉ एनर्जी, दैट ऑरा इज फुल्ली इलेक्ट्रिक. भाई साहब कमाल लग रही है. आपको बताए ये टीजर जो है ना थिएटर्स में सबसे पहले कहाँ आया था? कॉकटेल 2 के साथ दिखाया गया था. लोग ये पूरी फिल्म देखने के बाद जब बाहर आए तो रश्मिका, शाहिद और कृति के साथ साथ एक चौथा एंगल लेकर के आए. ट्रायंगल बनने की जगह स्क्वायर हो गया, क्योंकि श्रद्धा दिमाग में बैठ

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक सेकंड के लिए दिमाग में अगर आप इमेजिन करिए डेजर्ट सोल्जर्स का यूनिफॉर्म और एक गाना जो कि आइकॉनिकली अटैच हो जाता है इन सब चीजों से, संदेश से आते हैं, तो आपको क्या आएगा याद? बॉर्डर याद आएगी, राइट? गूज़बम्स आ जाएंगे याद करके। 1997 की बॉर्डर ना, इट वॉज नॉट जस्ट अ वॉर फिल्म एक्चुअली, इट वॉज अ फुल पैकेज इमोशंस का। जी पी दत्ता की ये फिल्म 1971 के बैटल ऑफ लोंगेवाला से इंस्पायर थी, राइट? सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, ये पूरा एक जो इन्होंने टीम के साथ शानदार इस्तेमाल करके पूरी फिल्म बनाई थी, दैट वाज अ कल्ट क्लासिक। आपको पता है संदेश से आते इतना बड़ा हिट था कि आज भी अगर हम पेट्रियोटिक गानों की लिस्ट उठाएं तो ये गाना नंबर वन पे आएगा ही आएगा। अब आपको मैं ये बताऊं कि एक और ऑफिशियली फ्रेंचाइजी इज इन द पाइपलाइन, बॉर्डर 3 अर्ली डेवलपमेंट्स में आ चुकी है। प्रोड्यूसर होंगी निधि दत्ता एंड भूषण कुमार के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। साथ ही इस बार हरबख्श सिंह पर ये पूरी बायोपिक जो है बनने वाली है, जो कि 1965 का जो वॉर हुआ था उसके लेजेंडरी आर्मी कमांडर थे। मतलब बॉलीवुड में बॉर्डर, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3 नाउ इज इन पाइपलाइन। बॉर्डर की लेगेसी अब सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बन के नहीं रह जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम नई नई कहानियां उनके लिए लेकर आ रहे हैं, राइट? सो बी रेडी। कब रिलीज होगी, जब होगी तो आपको पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी क्रेविंग को ना बस एक कोई स्वीट सी चीज नहीं चाहिए होती है, थोड़ा सा प्राइस चाहिए होता है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया चाहिए होता है, और थोड़ा सा वाह यार ये तो बहुत अलग है ये वाला एक टेस्ट चाहिए होता है। अगर आपका टी टाइम स्नैक जो है रूटीन अभी तक बिस्किट और चाय है, या कोई ओल्ड सी मिठाई है, या कोई ऐसी मछली है जो आपके एक्चुअली बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही है, देन यू जस्ट नीड टू चेंज इट। जीजी मार्ट से आप ट्राई करिए जामुन ट्रायंगल्स, एक ऐसा स्वीट ट्रीट जो पहली नजर में आपको अट्रैक्ट करेगा, फिर फर्स्ट बाइट में आपका दिल जीतेगा। बाहर से इट्स वेरी क्रिस्पी, इट्स गोल्डन, और अंदर से सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ वाला फ्लेवर आएगा, और उसमें वो एक रिच जामुन फ्लेवर है जो कि ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई की याद आपको साथ में दिलाएगा, एक मॉडर्न ट्विस्ट भी वो आपके लिए लेकर आएगा। सो बेसिकली इट्स अ स्वीट जो कि फेस्टिवल टेबल पर आप सबके सामने रखे तो वाहवाही भी लूटेंगे, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल है। और अगर आपका मूड स्वीट के साथ कुछ क्रंची, थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा सा होलसम खाने का हो रहा है, देन वी हैव अ होल लिस्ट ऑन जीजी मार्ट। जी हाँ, क्रशेबल नट्स सब कुछ अवेलेबल कराता है आपको यहाँ पे, क्रंची कैश्यूज, रोस्टेड आलमंड्स, लिप स्मैकिंग पिस्टैचूज, और काफी सारे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपके मंचिंग सेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। आप इनको ऑफिस डेस्क पे रखिए, ट्रैवल बैग्स में रखिए, घर पर इवनिंग स्नैक की तरह इस्तेमाल करिए, स्मार्ट चॉइस है। क्रशेबल की जो पैकिंग है वो हर सिचुएशन में आपके लिए फिट बैठती है। इट्स फार्म फ्रेश गुडनेस, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और फ्लेवर्स जो आपको बिल्कुल भी बोरिंग स्नैक नहीं लगेंगे, ये एक लेवल अप है। और हाँ, ये भी नहीं बोल सकते कि इसकी पैकेजिंग इज इको फ्रेंडली। सो माय डियर इको फ्रेंडली लवर्स, ये आपके लिए भी है। तो आप चाहे स्वीट टूथ वाले हो या सॉल्टी क्रंच क्रेविंग वाले, जीजी मार्ट हैज योर स्नैक सीन सॉर्टेड। कुछ यूनिक, थोड़ा टेस्टी, समथिंग दैट मेक्स एवरी बाइट फील लाइक लुक मोर स्पेशल। आप जा सकते हैं जीजी मार्ट ऑनलाइन पर, कहीं नहीं जाना है, घर से बाहर भी नहीं जाना है, जस्ट जीजी मार्ट ऑनलाइन.com पे जाना है, समझे।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
3: हाँ जी जी
2: आधा केजी मसूर दाल
3: जी जी
2: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
3: जी जी
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी पिए जा रहे हो
3: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर
2: क्या
3: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
2: वाजी क्या बात जी
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर
4: प्ले क्या बात है

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ना रोमांस करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, और फिर आते हैं इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स जिनके गाने भी हॉन्टेड होते हैं, हॉरर एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी पिक्चर का मूड सेट करके जाते हैं। इमरान 5 साल बाद हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं। आई थिंक ही इज ऑब्सेस्ड विद ऑब्सेशन। ये फिल्म है रू, म्यूजिकल हॉरर है एंड रिलीज होगी 2027 में, हिंदी तमिल तेलुगु। अब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मयंक शर्मा, ब्रीद फ्रेंचाइजी के क्रिएटर डायरेक्टर। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भूत होगा इसमें, आई एम श्योर ये साइकोलॉजिकल चिल्स और इमोशंस आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। इमरान के साथ हॉरर का कनेक्शन बड़ा पुराना है, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में वो उनका डार्क मिस्टीरियस वाइब, एक दी डायन में दैट क्रीपी मैजिशियन एंगल, राजरी अगेन जहां पे बिपाशा और ऐशा के साथ वो फुल सुपरनैचुरल केओस में थे। इमरान की हॉरर फिल्म्स का फेमस ना फॉर्मूला जो है वो सिर्फ डर नहीं रहा है, एक अनफॉरगॉटेबल साउंड ट्रैक होता है। राजश्री का दीवाना कर रहा है आप सुनो, एक तिडान का यारम सुनो, राज द मिस्ट्री का सोनियो सुनो, दैट स्पूकी सिनेमा बट

इश्क में कोई रू में हॉरर इमोशन म्यूजिक सब कुछ साथ में लेकर आ रहे, मतलब लाइट्स ऑफ करने से पहले प्लेलिस्ट तैयार रखनी जरूरी होगी, राइट? आप सुन रहे हैं मुग्धा को एंड यस इमरान इज बैक।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सिंगापुर, कभी कभी फ्यूचर इतना एडवांस लगता है ना कि लगता है अब बस रोबोट्स हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं या होंगे, ज्यादा स्मार्ट होंगे, शायद ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल भी हो जाएं। लेकिन जरा रुके, क्योंकि जो सीन वायरल हुआ है उसमें रोबोट का जो एटीट्यूड है वो तो फुल फ्यूचरिस्टिक था, पर बजट वो जीरो था हर जगह और हर बार की तरह। चाइना में एक ह्यूमनॉइड रोबोट को सड़क पर घुटनों के बल बैठकर लोगों से रिचार्ज के पैसे मांगते हुए देखा गया। हाँ, वही रोबोट जिसे हम सोच रहे थे कि दुनिया कंट्रोल करने वाला है, वो अपनी ही बैटरी के रिचार्ज के पैसे जुगाड़ करने के लिए भीख मांग रहा है सड़कों पर बैठकर। QR कोड स्कैनर उसके साथ भी था, ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल इंसान हो या रोबोट, बेगिंग भी डिजिटल तो हो ही गई है। हर कोई अपना QR कोड खुद लेकर के घूमता है। कैश का जमाना चला गया, लो बैटरी का जमाना है। मतलब AI टेक ओवर का प्लान जो था ना, उसको हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल का सीन आ गया, आई विल रूल ह्यूमैनिटी, बस एक चार्जर और UPI स्कैन के बाद, और अगर नहीं हुआ स्कैन तो सब खत्म। फिलहाल तो वीडियो देख करके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, रियल रोबोट था, स्टंट था, कोई परफॉर्मेंस आर्ट था।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, इमेजिन करो कैफे में लैपटॉप टेबल पर छोड़कर वॉशरूम चले गए, फोन सीट पे रखकर कॉफी लेकर जाना है वहां चले गए, वापस आके दोनों चीजें वहीं पे है। साउथ कोरिया में रहने वाले एक बंदे ने कहा कि वहां की पब्लिक सेफ्टी ने उनकी सोच बदल दी। मुझे तो सुन के ही सोच बदलनी पड़ गई। उनके हिसाब से लोग बैग्स, फोन्स, इवन साइकिल्स को इतना कैजुअली छोड़ जाते हैं जैसे दुनिया में भाई जरा देख के रखना, ऐसे नाम की कोई लाइन कभी बनी ही नहीं थी। भाई यार कमाल के लोग हैं। और हम तो रेस्टोरेंट में चेयर पर बैग रखने से पहले भी बैग को चेयर के आसपास के सारी जगहों में बांध के रखते हैं, क्या पता कोई बैग के साथ चेयर भी लेकर चला गया। तो ऑफ कोर्स हर जगह कॉशन जरूरी है, सेफ्टी को ना कभी गारंटीड मान करके केयरलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट का ये लेवल डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव है। पर ये हो तो साउथ कोरिया में रहा है ना, हम तो वहां रहते नहीं है, क्या करें। सोचो कितनी पीसफुल फीलिंग होगी जब पासवर्ड से पहले सोसाइटी का ट्रस्ट काम कर रहा हो। क्या बात है, आप अपना फोन कैफे टेबल पर छोड़ सकते हो। हैं चार्जर भी छोड़,

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। भाई आज की जनरेशन के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। ग्रुप चैट में सब एनालिस्ट हैं, रील में सब स्टोरी टेलर्स हैं, वॉइस नोट्स में तो कुछ लोग फुल पॉडकास्ट एपिसोड की तरह भेज देते हैं रिकॉर्ड कर करके, है ना। पर सवाल ये है, जब माइक सामने हो क्या आपकी आवाज लोगों को रोक सकती है? आई डोंट नो, मेरी आवाज सुन के आप रुकते हैं भागते हैं तो आप बताएंगे। वेल, आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क उन्हीं वॉइसेस के लिए है जो सिर्फ बोलना नहीं चाहती है, वो कनेक्ट करना चाहती है। यहाँ पे आप सब सीखेंगे कैसे एक सिंपल से थॉट को एंगेजिंग बनाया जा सकता है, कैसे पॉज का इस्तेमाल करना है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस फेक नहीं लगना चाहिए, उसको बिल्ड किया जाए। बिगिनर्स हो या ऑलरेडी आप कोई वॉइस कॉन्टेंट बना रहे हो, 12 आवर्स की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है, इन स्टूडियो दोनों ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। प्रोग्राम जो है ये पूरा वो 14 इयर्स एंड अबव के लिए है, एंड जो सिलेक्टेड ट्रेनीज होंगे ना, ओ माय गॉड, उनको मिलेगा एक मौका लाइव रेडियो स्टूडियो में आने का और वहां से शो करने का, यानी कि रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लाइव शो होस्ट करने का आपको मौका मिल सकता है। बट बिफोर ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू मेक द फर्स्ट मूव, एंड व्हाट्स दैट, वो है info@radiomasti.com.sg पर अपना एक इंट्रो लिखकर भेजना है, ईमेल करना है जी। ये मत बोलेगा कि SMS कर दें, नहीं, मेल करिए। सुन रहे हैं आप मुग्धा को? अच्छी बात है तो सुनिए।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: और इसी के साथ आज का मस्ती हैंगआउट यहीं तक। आज की बातों में ना थोड़ी हंसी, थोड़ा सरप्राइज, बॉलीवुड का तड़का, कभी वो छोटी सी थॉटफुल बातें तो शायद आप अपने साथ लेकर आगे जाएंगे। आज के शो ने अगर आपको आपके बिजी दिन में आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल ऐड करी हो, या ट्रैफिक में या वर्क रूटीन के बीच में थोड़ा सा आपको कंपनी दी हो, वेल देन माय जॉब इज डन। या फॉर श्योर, याद रखिए कोई भी दिन या हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन में एक अच्छा मोमेंट जरूर छुपा होता है। कभी कोई गाना, कोई मैसेज, किसी की आवाज, किसी की कोई बात, या कभी कभी कुछ लोग जिनको देख के आपको बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है ना। दिस इज मी आरजे मुग्धा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, दिल को थोड़ा हल्का रखिए, ज्यादा मत सोचिए। हम मिड वीक तक तो आ ही चुके हैं, दो एक दिन और उसके बाद तो वीकेंड आ जाएगा, है ना। फिर मिलेंगे अगले शो में नए किस्से, नए गाने और अपनी वही पुरानी मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सिंगापुर एंड टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। सर, हाउ टू सेल सुपर हिट

0: टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: कर फट जाए।
1: वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: Singapore, prepare for impact.
3: 3, 2, 1.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट आउट।
6: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। और कहीं कोई जाता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
5: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
6: Check it out.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live par.
2: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par ha to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है Midweek Blues on Radio Masti 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: इतने प्यार से अगर बुलाओगे तो हम कैसे नहीं आएंगे, आ जाओ ना, इतनी बार बोलने की वैसे जरूरत नहीं थी, 5 बजे तो अपन की ड्यूटी शुरू होती है यहाँ पे, तो हम तो वैसे भी पहुंच जाते हैं। हेलो हाय वेलकम नमस्ते गुड इवनिंग, यस यस दैट इज राइट, ये आवाज इस वक्त इसलिए आ रही है क्योंकि उसका टाइम हो चुका है, इट्स वेंसडे, इट्स 24th of June, 5 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट, मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हूँ। खुशी की बात यह है कि हम वेंसडे तक पहुंच चुके हैं, विच मीन्स वीकेंड अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, तो बस ऐसा ही है, लोग बात पहले से आ चुके हैं यहाँ पे, कह रही है आप बस अच्छे गाने चलाते रहो ताकि मेरे हाथ में भी जो है मेरे हाथ फटाफट चलते रहे, ट्राइंग टू फिनिश माय क्रोशे। ओह माय गॉड, इतनी जिम्मेदारी वाले काम जो है मुझे दे दिए जाते हैं। देखो मैं तो अपना काम करती रहूंगी जो मैंने करना है, आपको वैसे भी मेरे गाने जो है सही तो मतलब ठीक ठाक तो मतलब लग ही जाते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं करे तो फिर टेंशन क्या है, बातें करेंगे गाने सुनेंगे, बस ये जो डेट है वो तो हमेशा की तरह सफल ही होगी माय लव। बचपन भाई कहां से ये सारी जो है खबरें कूद कूद के जो कुछ मेरे पास खुद आई, कुछ के पास मैं खुद चल के गई, मैंने कहा कि देखो स्पेशल लोग हैं, बातें तो सारी बतानी पड़ेंगी, 3 घंटे हमारे पास, गाने भी अच्छे अच्छे चलाने पड़ेंगे, और कितना सही हो जाता है ना। अच्छा ये भी होता है कि अच्छा गाना सुन के अगर दिन की शुरुआत करो तो पूरा दिन का जो है इफेक्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नहीं आप कोई एकदम ऐसा गाना सुनो जो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही रुला दे आपको, देन पूरा दिन कैसा एकदम हौले हौले बड़ा स्लो सा एकदम वैसे से चलने लगता है, वही भड़कता एकदम करके सुनो तो वो भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। There has to be this common space, हाँ, जहाँ पे इधर फील गुड गाने एकदम नाइस मध्यम मध्यम मीठा मीठा, बट वो सुबह की जो है बात है, सुबह आई थिंक अच्छे से नुपुर ने आप लोगों को एंटरटेन और किक स्टार्ट कर दिया है, शाम को आओ यार मूड वूड चेंज किया जाए, मिलो चले, जाना कहाँ ना हो पता, अगले गाने के ही लिरिक्स है जो मैंने अभी अभी ऐसे ही बोल दिए हैं। वेल ये गाने वाने सुन के आए और बिल्कुल शुरू किया जाए Midweek Blues on Radio Masti 24/7 Live। गुड इवनिंग।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Are you ready?
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा केजी मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
4: वाजी, क्या बात जी.
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
6: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर. मिड वीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
4: ये इतने सालों बाद कहने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई बहुत बहुत टाइम के बाद लोग बाहर आते हैं और कहते हैं ये मूवी तो हमें ऑफर हुई थी लेकिन ठीक है, हुआ नहीं हुआ. अक्सर इसके पीछे ये बात होती है कि वो मूवी जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं वो काफी अच्छी चल गई होती है. एंड हियर द मूवी इज जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, द मूवी इन क्वेश्चन इज अंधाधुंध. नाउ okay, again, now Andhadhun is one of the movies where I cannot imagine anybody other than Ayushman Khurrana and Tabu, because I think they did a phenomenal job jab aati hai us movie mein acting ki. Aur Andhadhun ek aisi movie hai jisne mujhe matlab till the last minute bahut hi zyada edge pe rakha. It's like it kind of challenged the thriller person in me. I love watching these kind of movies, okay? And kya hota hai ki jab aapko is tarah ki movies dekhna pasand hota hai, jin logo ko bhi, they know it very well. Aap mujhse relate kar paoge ki hame aadat si ek hai ki are iske baad to aisa hona, iske baad to aisa hona hai. I think us movie mein hum jaise thriller addicts ko challenge kiya ki tum jo sochoge na exactly उसका उल्टा ही होगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन. सो आई लव बेसिकली अंधाधुन जो है मूवी. बट वरुण धवन जो है ना, आप कहोगे ये कहाँ से आ गए, मैं बताती हूँ. उन्होंने रिवील किया दैट ही टर्न डाउन अंधाधुन एंड तब्बू की जगह ओरिजिनल चॉइस थी कंगना रनौत. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट श्री राम राघवन अंधाधुन एंड इट्स वन ऑफ द बॉलीवुड फाइनेस्ट थ्रिलर्स. बट ऐसा सोचा जाए विथ वरुण धवन एंड कंगना, नॉट दैट दे आर नॉट गुड एक्टर्स, दे आर गुड एक्टर्स. वरुण धवन हैज डन सीरियस रोल्स एंड इन बदलापुर आई लव्ड हिम. आई नो दैट ही हैज दैट काइंड ऑफ टैलेंट विद हिम. कंगना रनौत ऑल्सो, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट यू नो समहाउ सम प्लेसेस यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन, चाहे कितना भी कुछ करो नहीं. ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, बाकी तो आप जैसा कहोगे वो भी सही है, राइट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल इलाही मेरा जी आए कि अगला गाना फटाफट से आ जाए. क्या कहते हो? गुड इवनिंग.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 5:30 बज चुके हैं, इसका मतलब दोस्तों वक्त हो चला है कि ट्रैफिक का अपडेट भी इस घंटे का ले लिया जाए। एक एक्सीडेंट की खबर है इस वक्त ऑन BKE टुवर्ड्स वुडलैंड्स बिफोर डेयरी फार्म रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन CTE टुवर्ड्स SLE बिटवीन जलान बहागिया एंड मर्चेंट रोड, और मिलेगा व्हीकल ब्रेक डाउन ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर बुकेट बतौक ईस्ट एवेन्यू 3। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट, और साथ साथ भाई एक रेट्रो गाना भी हो जाए, बीच बीच में आते रहना चाहिए, फील बनी हुई रहती है। And when I think retro, most of the times Kishore Da comes to my mind. उनके साथ आशा ताई भी आ जाए तो फिर मजे ही मजे हो जाए, तो ठीक है मजे कर लेते थोड़े और। On Radio Masti 24/7 Live, this one is खुद ही सुन लीजिए।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: ओ मेरे हमसफर. आई वाज सिंगिंग आउट सो लाउड यहाँ पे अभी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं मंत्रा आपके साथ एंड यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. 5:38 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. बट इसका अलग ही मजा है जब गाना चल रहा हो और आप उसके साथ साथ काइंड ऑफ सिंग अलोंग करते हुए जाए. इट इज क्वाइट क्वाइट फन. पेप्स अप माई मूड कम्प्लीटली. और क्या पेप अप करता है मूड कम्प्लीटली, जब कोई चीज का इंतजार आपको काफी वक्त से हो एंड वो सडनली एक दिन पैकेज बन के आपके घर में आ जाए एंड आप यू गो लाइक ओ माई गॉड दिस इज ग्रेट. ऑलराइट भाई, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बात क्यों ना करे भाई, हर कोई कर रहा है बात. सो वैभव सूर्यवंशी हैज जस्ट रिसीव्ड हिज फर्स्ट इंडिया का जर्सी एट जस्ट 15. भाई उसकी जिंदगी का, इस 15 साल की जिंदगी का मेजर मोमेंट है, दैट इज फॉर श्योर. हिज सिलेक्शन फॉर इंडिया का सीनियर मेंस स्क्वाड हैज आल्सो ड्रॉन अटेंशन बिकॉज ही हैज रिपोर्टेडली ओके ब्रोकन अ 37-year-old रिकॉर्ड विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड बाय हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का जो है. Of course, he was the one. Now, ahead of this T20 international series, jo ki against Ireland hone wala hai, hamare young batter Vaibhav Suryavanshi jo hai, became quite emotional while holding that jersey. Okay, pura package wagera unhone khola and jab wo bahar unko pehli baar wo jersey dikhi, usko chua and he felt like it's the dream come true, right? Not only for him, for his family as well, and for a teenager who started with the hope of wearing India ke colors ek din. Na jaane kitne log ye sapna lekar aage badhte honge, but there is only one Vaibhav Suryavanshi, right? And yeah, it's just one of the most amazing and talked about moments jo hain ban chuka hai is waqt mein. I am sure that this boy is going to do wonders and all the best to him and all the best to the Indian cricket team. Hum jahan jaye jeet ka pancham phehra gaya hai. Wah wah wah wah, hamara pyar yu hi gehra hua. Nahi, main nahi gaati hu. I think ye gana jo jinhone gaya hai wahi better gaate hai. Radio Masti 24/7 live par, let's go.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
3: बिल्कुल, मूवमेंट बनी रहनी चाहिए दोस्त। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई, लेकिन आ गई। कहता ना, देर आए दुरुस्त आए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में हम अपने जो है वर्कआउट नामक चीज जो है, बेसिकली वर्कआउट भी नहीं, ये तो मतलब एक थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन ही होगी एक तरह से, कि आप जिम जाते हो ना, ऑल दोस थिंग्स, बट बेसिक मूवमेंट जो है डेली डेली का, वो कितना ज्यादा जरूरी है। वो आई एम ग्लैड दैट इसकी अवेयरनेस जो है इस जनरेशन में और इस वक्त में बहुत ज्यादा है, कि भाई प्रोटीन गोल्स हिट होने चाहिए और जो है इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। वाई? बिकॉज एवरीबडी इज इन टू इट नाउ डेज, एटलीस्ट इन द हेल्दी लाइफ स्टाइल और लिविंग में। एंड ये बातों की नॉलेज, अगर टू मच नॉलेज भी थोड़े से ज्यादा हो जाती है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आगे चलकर जो है अपने और ओल्डर एज में you have to be strong and then you have to start working on it now onwards. Hamari Bollywood ki actress Tapsee Pannu jo hai, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया ऑफ अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रूटीन, एंड यू नो इट इज अमेजिंग हाउ वन कैन कंप्लीट दैट मनी। आई हैव नॉट रीच दैट स्टेज। शी डिड 275 बर्पीज, 200 सिटअप्स, 150 पुशअप्स इन जस्ट 60 मिनट्स। इट्स अ लॉट, ओके, लेट मी टेल यू, इट्स अ लॉट। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि मैं आपको ना लाइफ बहुत सडन ऐसे सिचुएशंस में डालती है जब आपको लगता है कि भाई आप ना कहीं और ही हो। समटाइम्स आई सी मेरे आसपास के एल्डरलीज को यहाँ पे, एंड आई गेट सो अमेज्ड एंड इंस्पायर्ड। दे आर सो फिट एंड they are just absolutely amazingly fit. And एक बार तो मतलब मैंने देखा कि हम लोग किसी स्लोप पे चढ़ रहे थे, कहीं पे हाइक करने जा रहे थे, और भाई अंकल मेरे जो सामने चल रहे थे वो ना लाठी लेके चल रहे हैं, बट वो चढ़े जा रहे हैं। उनकी अब उनकी एज है, बट ही इज लाइक ऑन, मेरी स्पीड उनकी स्पीड से कम। मतलब मेरी हालत खराब, क्योंकि मैं उससे पहले की भी इंक्लाइन ऊपर चढ़ते हुए जा रही हूँ। मैंने कहा शर्म कर अंतरा, शर्म कर। बट देन या इंस्पायर होके कुछ अच्छा काम ही हो रहा है उसके बाद से, सो दैट्स ओके। ओके, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। भाई अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आपको जरूर करना चाहिए। मैं तो आजकल सबको यही बोलती हूँ, बड़ा जरूरी है जी, बड़ा जरूरी है। हाँ जी, अच्छा खाना है तो वजन भी घटाना है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मेरा तो मोटिवेशन यही है, आई वॉन्ट टू बी फिट बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट गुड फूड। या गुड इवनिंग।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, बट दिस वन इज द 2.0 वर्जन फ्रॉम कॉकटेल 2. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. 6 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट. कल बात कर रहे थे हम लोग मेसी की, बिकॉज ऑफ कोर्स अर्जेंटीना की बात हो और उसके बाद मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा हो तो फिर मतलब बेसिकली बनाया हो तो क्यों ना करे उसकी बात. देखो दो नाम है जिनके नाम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फुटबॉल आते ही आते हैं. एक मेसी, दूसरे है रोनाल्डो. कल को हो गई मेसी की बात, आज करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात. नाउ ही हैज नाउ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स आफ्टर ऑफ कोर्स ही नेटेड ट्वाइस इन पोर्टुगल का 5-0 का विन ओवर उज़्बेकिस्तान. हमारे 41 ईयर ओल्ड भाई, उसकी दूसरी मतलब बेसिकली दूसरी वाली एज जो होती है ना, कहते आपकी बॉडी 25 की है, आपकी बस एज जो है वो 41 ईयर ओल्ड है. आप समझ रहे हो, बंदे की बॉडी 25 की है वो. बट एनीवेज कमिंग बैक एंड व्हेन ही एक्चुअली वन इट, ही वाज लाइक आई एम बैक एंड ही सेड दैट टू द कैमरास व्हेन ही टुक हिज ओवरऑल वर्ल्ड कप का टैली टू 10 गोल्स. एंड रोनाल्डो सेड दैट व्हाइल ही वाज हैप्पी टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वाज द टीम का इम्प्रूवमेंट. कि टीम हैज परफॉर्म्ड रियली वेल एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड एज द सेइंग गोज, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. सो पोर्टुगल नाउ हैव 4 पॉइंट्स फ्रॉम 2 गेम्स एंड उसका नेक्स्ट जो है मैच है कोलंबिया में इन देयर फाइनल ग्रुप के का मैच. सो कूडोस टू देम, गुड ऑन देम. इफ यू आर फॉलोइंग पीवा एंड फुटबॉल, प्लीज डू लेट अस नो कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो. आई एम अमेज्ड ऑफ वॉचिंग अदर थिंग्स एज वेल. जैसे नॉर्वे की टीम जो है वो जब जीती, सो दे डिड दिस ट्रेडिशनल, नॉर्वे में कुछ होता है ड्रम के बीट्स के साथ, दे डू दिस एक्शन ऑफ रोइंग एंड दे डिड दैट इन टाइम्स स्क्वायर में सारे फुटबॉल फैंस जो है मिलके. इट वॉज such a beautiful sight, amazing. Good evening.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: 3, 2, 1।
2: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: हाँ जी, हाँ जी, आपने किया कि नहीं किया, भेजा कि नहीं भेजा, अगर नहीं भेजा है तो क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि सवाल के जवाब देना तो आपको अच्छा ही लगता है। क्यों आप बैठ के नहीं करते हो, जब भी वो टीवी पे कोई क्विज प्रोग्राम आता है तो फिर मतलब पूरा घर एक साथ, मतलब एक ही टीम

जाते हो? नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतराब के साथ 6 बजकर हो चुके हैं 16 मिनट। और ये तो हर किसी ने कर रखा है, नहीं जो अमिताभ बच्चन जी वाला जब शो आता था तो अभी भी मतलब चला दो तो फिर ऐसा है कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, घर में मतलब वो भी डिवाइड हो जाता था कि अरे नहीं नहीं नहीं ऑप्शन बी है। और फिर जैसे ही सही जवाब ना पता था मुझे जाना चाहिए यहाँ पे। अब वैसा ही एक मौका आपको यहाँ पे सिंगापुर में लाके दे रहे हैं, द लाइन सिटी चैलेंज, वन ऑफ इट्स काइंड, डेफिनेटली द स्मार्टेस्ट गेम शो एवर यू हैव बीन इन टू। तो वेल, बात कुछ ऐसी है कि अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो आपको थोड़े बहुत स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला कदम, लायन यानी कि LION लिखकर हमें भेज दें 9158963 पर। दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन लायन सिटी चैलेंज। वंस यू डू दैट, फिर आपके पास जाएंगे दो सवाल जो कि क्वालिफाइंग सवाल होंगे। आपने उनके देने हैं जवाब, जवाब दोगे तो सही जवाब दोगे तो वापस रिटर्न जो है उसमें आएगा कि भाई अब अगले कदम पर, पड़ाव पर जो है क्या करना है। और ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे उस सेंटर स्पॉट पे जहां पर आपको जीतने को भी काफी कुछ मिलेगा, मौका मिलेगा एंड अपनी नॉलेज भी फ्लेक्स करने का पूरा पूरा आपको मौका दिया जाएगा। सो वेल, इफ यू हैव नॉट डन इट टिल नाउ देन यू हैव टू डू इट नाउ, डू इट बिकॉज दैट स्पेशल सीट इज वेटिंग फॉर यू, for you to come and win the Lion City Challenge. And I know, I believe in you, you can do it. एक बार भेजो तो सही, आके बढ़ो तो सही, है ना? ओके, चलो एप्लीकेशन फॉर्म वॉर्म मंगा लेना, है ना, फीस वीस दे के उसके बाद एकदम सेट हो जाना। फिर अपन आपको बिल्कुल एकदम तैयार करके रखेंगे सामने स्पॉटलाइट में, मजे ही आ जाएंगे। एंड देन यू कैन फ्लेक्स टू एवरीबॉडी की यू नो आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई हैव वन इट एज वेल। यू वांट टू से दैट राइट? सो देन डू इट, LION, भेज दीजिए 9158963 पर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: जावेद बशीर साहब की आवाज, क्या गाना, मजेदार मजेदार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ। 6:27 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। ट्रैफिक का अपडेट ले लेते हैं फटाफट से। एक्सीडेंट की खबर है इस वक्त इन सिटी इटरनल टुवर्ड्स AYE एट हैवलॉक रोड एग्जिट। एक और एक्सीडेंट की खबर ऑन TPE टुवर्ड्स SLE आफ्टर KPE, अवॉइड करें लेन नंबर 2। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE टुवर्ड्स MCE बिटवीन लोअर डेल्टा रोड एंड क्लेमेंटी रोड। तो ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड जो है वो हमारा वेट कर रही है, जरा उनके पास जाते हैं, फिर होकर वापस आते हैं। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: एक मिनट, ये क्या मतलब है यार? मतलब ये क्या है? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज रेस 4. सीरियसली कुछ नया लिख दो भाई सर. बट एनी वेज पीपल, रेस 4 जो है ऑफिशियली इस पे काम शुरू हो चुका है. रेस सासों की रेस याद भी सिर्फ इतना ही है, उसके बाद की रेसें तो हमें याद भी नहीं है कि अब 4 की भी बारी यहाँ पर बिल्कुल आ चुकी है. सो आफ्टर इयर्स ऑफ स्पेकुलेशन, सैफ अली खान जो है रिपोर्ट्स की मानी जाए सेट टू रिटर्न टू द रेस का फ्रेंचाइजी. एंड दैट्स नॉट ऑल, रिपोर्ट्स की अगर ये भी मानी जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है ही इज गोइंग टू प्ले द मेन एंटागनिस्ट रेस 4 में. व्हाइल द स्टोरी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ रेस 2. जरा याद दिलाना अगर किसी ने रेस देखी हुई है पहले वाली सारी, कि रेस 2 में हुआ क्या था. मेरे को तो यही याद नहीं आ रहा है, रिविजन करना पड़ेगा इसके पहले तो. सो इफ दिस इज ट्रू देन दिस काइंड ऑफ वुड बी द कमबैक फॉर द फैंस हु हैव बीन वेटिंग फॉर इट, राइट? स्टाइलिश एक्शन के सीक्वेंसेस, shocking twist and intense rivalry that made actually race a blockbuster franchisee. I can only hope for the best. कहाँ है अक्षय खन्ना भाई? एक और इतनी तैयार स्क्रिप्ट यहाँ पर बैठी हुई है, आई एम श्योर उनके पास गए जरूर होंगे. स्पेशली आफ्टर धुरंधर अक्षय खन्ना हैज बीन इन क्वाइट सम डिमांड. बट वेल ठीक है, ये भी देख लेते हैं और क्या कहें हम. अब इससे ज्यादा तो, उम्मीद से ज्यादा तो हम कुछ लगा भी नहीं सकते हैं, है ना? हाय क्या ही बोल दिया मैंने. फिलहाल तो हम लगाएंगे गाना अगला रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर. गुड इवनिंग.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
0: You know, sometimes you need that just one person to believe in you, and you can do wonders when you know that भाई ठीक है, ये बंदा या बंदी जो है वो हमारा इंतजार करेगी, मौका दिया है तो she will keep her word, right? Radio Masti 24/7 live on Trap के साथ यहाँ पर चल रहा है Midweek Blues। आपको पता है दीपिका पादुकोण के साथ भी सेम टू सेम ही हुआ था। क्या होता है कि जब हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जो है पॉपुलैरिटी देख लेते हैं, और आज वो जिस मुकाम पे है उसको देखते हैं कि क्या ही क्या होगा, बट एवरीबडी हैज देयर ओन फेयर शेयर ऑफ जर्नी। सो ओम शांति ओम, वी ऑल नो दैट दीपिका पादुकोण ने इस मूवी फारा खान की इस मूवी के साथ जो है वो डेब्यू किया, बट वॉट वी डोंट नो वॉज फारा खान एक्चुअली डिलेड ओम शांति ओम का शूट अ लिटिल बिट बिकॉज शी वेटेड फॉर दीपिका पादुकोण टू फिनिश हर ट्रेनिंग। शी वॉज न्यू, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं, ऑफकोर्स नहीं पता होती है जब आप किसी भी फील्ड में, इट्स जस्ट नॉट एक्टिंग किसी भी जगह पर, यू नो, इसीलिए हम लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या होता है, क्या कल्चर है, किस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, व्हाट ऑल यू नो यू गेट टू डू एंड नॉट गेट टू डू एज वेल। बट एनीवेज, फारा खान जो है उन्होंने रिवील किया दैट दीपिका पादुकोण अंडरवेंट मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन बिफोर फेसिंग द कैमरा फॉर ओम शांति ओम। भाई एक्टिंग के साथ साथ कथक की क्लासेस भी इनको बिल्कुल कराई गई। शी वॉज ग्रूम्ड एक्सटेंसिवली अपने डेब्यू से पहले। फारा खान ने इनफैक्ट कहा था कि तुम सेट पे तो जरूर रोज आना, ओके, सेट पे ऑब्जर्व करो शाहरुख खान एंड श्रेयस तलपड़े को टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट एंड फिल्म मेकिंग प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। But the hard work clearly paid off, nahi? Deepika Padukone jo hai, she went on to become one of Bollywood's ki biggest superstars, and you know, it's just that one moment and that one person who will back you up and believe in you no matter what. And zaruri nahi hai ki wo koi family ka hi ho, wo aapko kahin par bhi mil sakta hai. And I completely believe in this process of destiny. Hota hai yaar, hota hai. Wo bhi hum khud hi banate hain. Ab itni sari baat aur uska gana na ho to phir thoda sa aisa incomplete sa feel aayega na. So let's go.

0: तेरे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा।
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: yeah.
2: Heartbeat.

0: था, पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ जी, वो जो मोड़ आया था ना, जहाँ पे आप दिल छोड़ आए थे, वो मोड़ यही है. और इस मोड़ को कहते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. 7 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं मिडवीक ब्लूज. आप सुन रहे हो ब्लूज तो कहाँ ही होते हैं, वेंसडे वाले दिन भाई कोई ब्लूज होते हैं? क्या ही मजाक कर रहे हो आप. वेंसडे वाले दिन होता है इंतजार, क्योंकि फ्राइडे दिख रहा होता है यहाँ से, फिर उसकी खुशी में एकदम खुशी और मग्न हो जाते हैं. बट वेल भाई, जहाँ पे बहुत सारी चीजों के अपडेट्स है, इंस्टाग्राम तो अलग ही उस पे चल रहा है कि हम सब कुछ अपडेट कर देंगे, सब कुछ. देखो, इंस्टाग्राम ने हमारी फोन की जिंदगियां हमारे साथ साथ तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ही ली है. हम ऐसे उनकी डूम स्क्रॉलिंग में डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता. इट्स लाइक अ ब्लैक होल. वंस यू गेट इनटू इट, यू इवेंचुअली हैव टू टेक लाइफ. भाई, बंद ही करना पड़ेगा. ऐसे तो धीरे धीरे करके तो हो ही नहीं पाएगा. इट्स दैट लेवल का थिंग. बट नाउ इंस्टाग्राम इज testing at the moment horizontal videos for TV as it expand अपना big screen viewing का experience. मतलब सिर्फ फोन पर नहीं, हमारे जो टीवी पर, जो वैसे भी आप बहुत ही कम यूज होता है उसको, उसमें जो है इंस्टाग्राम कह रहे हैं कि हम करेंगे ना, हम कुछ और करेंगे, हम पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे जो आप अपने छोटे छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो. It just kind of amazes me every single. मैं सोचती हूँ कि अब और क्या आगे होगा, तो उससे पहले ही दो चार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर मैं क्या ही बताऊँ. But well, Instagram का TV push is about to kind of turn creator content into something people can watch, not just from couch, just scroll on a phone, right, and do it on the TV as well. By Samsung ke devices mein jo hai filhal iska jo pilot testing hai wo shuru kiya gaya hai. Let's see, aage dekho kaisa hota hai ye. Aur kitna dikhaoge yaar, aur mat karo yaar, aisa main kehna chahti hu. But then I'm sure that I would be one of those people who would enjoy doing something like that. अच्छे लगते हैं यार ये updates इस तरह के. But yeah, lazy होते जा रहे हैं हम लोग. Lazy बहुत ज़्यादा. गाना सुनते हैं.

और मेरी ओर यहाँ पर आया एक एक पैगाम, और वो भी एक खूबसूरत हसीना के नाम, जो कि अभी अभी जस्ट आई है, बैठी है तसल्ली से और फिलहाल मेरी आवाज सुन रही है। एक बहुत ही खास खास इंसान है जो फिलहाल मेरी आवाज सुन रही है आंसी, और इनका उन खास इंसान का जो है ना एक फेवरेट कलर है। जब मैं इनसे लास्ट टाइम मिली थी तो तब मुझे उन्होंने बहुत तसल्ली से बताया था और बड़ी ही कैंडिड सी कॉन्वर्सेशन थी हमारी कि मुझे ना ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, मेरा तो हमेशा से ही ऐसा रहा है ना आंटी। याद आया कि आपको ब्लैक कलर कितना पसंद है, और तो वही पसंद को आगे बढ़ाते हुए गाना भी कुछ ऐसा आज मैंने सोचा कि जब आपने ट्यून इन किया है इतने टाइम के बाद तो कुछ प्ले कर दिया जाए, है ना, माहौल को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए। आई होप यू आर डूइंग वेल ऑफ कोर्स। एंड अगर ऐसे ही जैसे कि अभी बहुत ही प्यारी सी आंटी को यहाँ पर मैं जो है पैरी पोना कर रही हूँ ऑन एयर और ब्राउनी पॉइंट्स भी कमा रही हूँ, आपने भी कभी किसी को ऐसा बोलना है तो आप हमें बता सकते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं आपकी तरफ से फुल ऑन झुक के दंडवत प्राणी पैरी पोना दोनों ही कर दूंगी। बाकी आंटी आई होप यू लाइक दिस गाना कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू, आपके फेवरेट कलर का और आपकी मैं भी फेवरेट है ना, और जो आपके बगल में बैठी हुई है वो फेवरेट हाँ हो सकती है, है ना, है ना। आई लाइक दैट स्माइल ऑन योर फेस। हियर यू गो, लेट्स गो काला शकला। ब्लैक इज ब्लैक, ब्लैक इज ब्लैक।

0: is black.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
3: आपकी नॉलेज, आपकी जीत.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
1: आई लव इट जब किसी का पसंदीदा गाना जो मैं प्ले करती हूँ और उससे लोग खुश हो जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है. सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ बट सो प्राइसलेस राइट दोज मोमेंट्स ब्यूटिफुल. रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ 7:00 हो चुके हैं. 25 मिनट में वीक ब्लूज चल रहा है. ब्लूज कौन से ब्लूज? हु आर दीज ब्लूज वी आर टॉकिंग अबाउट? देर आर नो ब्लूज वेन वी आर ओवर हेयर. भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात हम यहाँ पे करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं जो कि बिल्कुल आपको अपडेट जरूर दूंगी. लेकिन सिंगापुर की पब्लिक बसेस की बात कर लेते हैं. यहां पर भाई पब्लिक बसेस जो है दे विल बी फिटेड विद दिस न्यू फेयर पेमेंट के रीडर्स कहा जा रहा है बाय द एंड ऑफ 2027, मेकिंग हमारी ये बस राइड्स मोर कन्वीनियंट फॉर द कम्यूटर्स. द थिंग इज दैट बस राइड्स ऑलरेडी सिंगापुर में काफी कन्वीनियंट है, मतलब फॉर फ्रॉम माय पीओवी अगर देखा जाए. सो अपग्रेडेड जो डिवाइसेस हैं दे फीचर लार्जर एंड क्लियरर स्क्रीन्स, अपेरेंटली फास्टर सिंपली गो के ट्रांजैक्शन अपडेट्स एंड अ न्यू टैप एनीवेयर का फंक्शन. बेसिकली ये अलाउ करेगा पैसेंजर्स टू टैप एनीवेयर ऑन द स्क्रीन जब वो बोर्ड कर रहे हैं या फिर व्हाइल अलाइटिंग, राइट. न्यू रीडर्स जो है दे आर करंटली बींग टेस्टेड बिफोर दे आर काइंड ऑफ प्रोग्रेसिवली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल द पब्लिक बसेस. But yeah, I mean, I love Singapore because of this as well. कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर सब इतना ज्यादा सॉर्टेड आउट लगता है. अब तो कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, बट स्टिल देर इज ऑलवेज दैट स्कोप. कुछ ऐसा होता है फिर मुझे लगता है कि अच्छा ये भी कर सकते थे क्या, वैसे जरूरत थी नहीं, बट थैंक यू सो मच. वेल ऐसा किया जा रहा है. सो 2027 तक नए वाले रीडर्स भी लग जाएंगे यहाँ पर फॉर ऑल आर बस पगलूज. आई लव बस मोर देन ट्रेन. ये मैंने आपको पहले भी कहा, स्पेशली द डबल डेकर वन, दे जस्ट they are such a therapy, I tell you. Beautiful, they are amazing, especially in Singapore, aur bhi zyada beautiful. Well, filhal ke liye to yahan par ek aur retro gaane ki taraf yahan pe main badh chali hu. Ab jab itna dur aa gaye hain to fir sun hi lete hain kya kehte hain. You will enjoy it for sure. Let's go.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: जो नशा है ना इस गाने में, ओहो, और जब वो मतलब वो एकदम ठहराव के साथ जब वो गाते हैं और बाद में जब फास्ट भी हो जाता है, it just gives you those goosebumps, right? कि सच में यार इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की। रेडियो मस्ती 24 सो लाइव पर ट्रैफिक का अपडेट है, देना तो पड़ेगा ही, राइट। 7:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन टीपीई टूवर्ड्स एसएलई आफ्टर सिंकांग ईस्ट रोड, व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा ऑन एवाईई टूवर्ड्स एमसीई आफ्टर क्लेमेंटी रोड, और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन टीपीई टूवर्ड्स एसएलई आफ्टर पुंगोल रोड। सो ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। मजे आ गए, ये खाना सुनकर ना एकदम कहना दिल खुश हो गया, आपका भी हो गया ना। एक और अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, एकदम मैं ठहराव वाले मोड में अचानक से चली गई हूँ। दिस इज अखिल सच देवा की आवाज, इट्स ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम बद्रीनाथ की दरहनिया।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जाती है कि ये बात करते करते ना मेरे को ना ओरिजिनल जामुन की जो है याद आ जाती है, एंड समहाउ आई फाइंड द टेस्ट इनसाइड एंड आई एम लाइक यू. कुछ अगर ऐसा मिल जाए तो मजे आ जाए. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मिडवीक ब्लूज में हमेशा ऐसी जिम्मेदारी पकड़ाई जाती है, मतलब जिसको खाना पसंद है उसको ऐसी वाली चीजें पकड़ाओ तो उसके मात करे फिर उसके मुंह में पानी आ जाए. बट ठीक है, कोई नहीं, ggmartonline.com ने वैसे थोड़ा बहुत तो मेरा साथ दे रखा है, वरना तो मेरा क्या ही होता. बट इफ जस्ट इमेजिन इफ यू कैन जस्ट कैरी जामुन एनीवेयर. अब आप कहो कि कहाँ, सिंगापुर में, मतलब क्या बात कर रही हो. जामुन ट्रायंगल्स की मैं बात कर रही हूँ. दिस इज समथिंग यू वुड हैव नॉट हैड बिफोर, समथिंग वेरी डिफरेंट काइंड, राइट. आप अपने घर पे भी रखोगे ना टेबल पे, और किसी को ऐसा होता है ना कि हम लोग के घर में लोग आते हैं उसके बाद कहते हैं कि अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज कराती हूँ, आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा, जस्ट ट्राई दिस एंड देन यू हैव टू से बताऊंगी नहीं. अरे ऐसे कैसे नहीं बताएंगे मैडम, हम बताएंगे ना. जामुन ट्रायंगल अगर एकदम डिलाइटफुल, हमारा ये जो ट्रीट है, द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ जामुन का फ्लेवर विद दिस क्रिस्पी गोल्डन कलर का एक्सटीरियर एंड दैट सॉफ्ट मेल्ट इन योर माउथ वाला सेंटर. ये ट्रायंगल शेप के जो एक एक पीस है, इट सेज and it delivers also this authentic taste of that confectionery wala jo ek feel aata hai na with that modern twist. ye jo hai premium sweet hai and it's आइडियल. मतलब घर पे आपने लोग बनाए हो, त्योहार हो, तीज हो, स्पेशल गिफ्ट किसी को देना हो, और मतलब लोग ऐसे आके बोलेंगे कि ये, अरे वाह ये कहाँ से, ऐसी चीज है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. भाई ये रिच है, फ्रूटी है, फ्लेवर तो पूरा का पूरा है, एंड भाई एयर टाइट कंटेनर में आप उसको स्टोर करके रखो उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए, एंड यू एंजॉय दिस जामुन का ट्रायंगल्स. 135 ग्राम का, $4 का एक डब्बा आता है. एक बार ggmartonline.com जाकर जो है ना इसको ऑर्डर करके आप ट्राई करो. बोल बता रही हूं मैं कि मतलब आप बार वापस जाओगे और वापस ऑर्डर करोगे. इट इज दैट गुड, इट्स रियली रियली नाइस. या वो अच्छा, वेबसाइट पूछ रहे थे वापस से, ggmartonline.com. जी. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. बोलना मत, हमने बताया था. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी.
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर.
1: क्या जी?
2: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी क्या बात जी.
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: चलते चलते अब यहीं पे रुक जाना पड़ेगा क्योंकि घर भी तो जाना पड़ेगा क्योंकि कल वापस भी तो आना पड़ेगा। वाह वाह, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ थी। मिड वीक ब्लूज यहाँ पर चल रहा था लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ पे टाटा बाय बाय करेंगे थोड़ा सा और फिर मूड ऐसा बनाएंगे कि कल जब आएंगे तो फिर हम आपको 90s में गोते खिलाएंगे। दैट इज ट्रू भाई, लेकिन उसके लिए आपको सुबह से ही ट्यून इन कर लेना पड़ेगा। भाई सुबह सुबह आ जाती है हमारी नुपुरवा, तो मस्ती मॉर्निंग्स में आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर एक घंटे का आता है हमारा मस्ती म्यूजिक कैफे का ब्रेक और उसके बाद शुरू होता है द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ द वीक व्हिच इज थर्सडे व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 11। इट इज द 90s वाला नशा और मस्ती जो है वो शुरू होती है। यस, आई विल बी बैक मस्ती 90s मिक्स टेप लेकर कल बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी। फिर उन यादों में होंगे, फिर वही बातें करेंगे और बहुत ही ज्यादा मतलब मजे ही आ जाएंगे। दैट्स व्हाट इज पक्का गारंटीड यहाँ पर। वैसे तो हर शो पे हम यही गारंटी देते हैं बट यस यू स्टे ट्यून बिकॉज आप हैं तभी तो हम हैं। आई नो अभी अच्छा तो हम चलते हैं क्योंकि हमें जाना है जिम और जिम जाकर वही करना है जो कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे हम जाएंगे क्योंकि हमने कहा है कि अच्छा खाना है तो जिम जाना है। सो यही सोचते हुए या मैं चली अपने रास्ते। यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड, कल मिलते हैं मस्ती 90s मिक्स टेप पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

0: एक इटालियन फिल्म है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जर्मन नाजी कैंप में एक पिता अपने बेटे के लिए आसपास मौजूद मौत से जिंदगी के सपने बनाता है और टुकड़ा टुकड़ा कर अपने बेटे को तोहफे के तौर पर देता रहता है। उसे महसूस नहीं होने देता कि किसी रोज मृत्यु उनको दबोचने आएगी। एक रोज पूरी की पूरी मौत खुद रखकर उसे पूरी की पूरी जिंदगी दे देता है। आखिरी रील में बच्चे के चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कान होती है, एक सच हो चुका सपना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत स्वागत स्वागत, केम छे सिंगापुर, सारू छे अक्का सिंगापुर मारू छे। मैं हूँ आपका समर रेडियो 24/7 लाइव पर, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती गीत माला में। आप सोच रहे होंगे कि आज की मस्ती गीत माला की ये ऐसी इमोशनल शुरुआत मैंने क्यों की, समझ जाएंगे आप। फादर्स डे स्पेशल शो है आज का हमारा ये। देखिए, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्मों में हमने कई कहानियां कही हैं जो पिताओं के लिए ही लिखी गई, मगर इतनी कहानियों में होने के बावजूद भी पिता कोई खामोश दास्तान है, जैसे जिसे कहने के लिए कोई दास्तान गो नहीं, शायद मैं भी ना कह पाऊं। पिता आपका वो आंसू है जो आंख में भर तो आया पर कभी गिरा नहीं, वो मुस्कान है जो कभी थकी नहीं, वो बेवक्त की चीख चिल्लाहट नहीं, एक लम्हे की रौबदार आवाज है। दुख में वो कड़वी एलोपैथी की दवा नहीं, मीठी होम्योपैथी की गोलियां हैं। सुख में वो किसी मल्टीविटामिन से कम नहीं, वो रेखा गणित की कॉपी है, एक पन्ना रेखाओं से भरा हुआ, एक खाली। पिता नंबर लॉक वाली कोई अटैची है, एक ऐसा फोल्डर है जिसमें परिवार के पासपोर्ट और आधार कार्ड रखे होते, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते। पिता चश्मा है, पिता अखबार है, पिता ही आपका रविवार है। तो आज का मस्ती गीत माला हम पिताओं को ही समर्पित कर रहे हैं, मतलब एक और सफर हम शुरू करने वाले हैं, और ये सफर इस बार हम पापा के कंधों पर सवार होकर करने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे फादर्स की, स्पेशली बॉलीवुड के कुछ पिताओं की जिन्होंने एक बढ़िया मिसाल पेश की, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि तमाम सोसाइटी के लिए, और अपने बच्चों के लिए जिंदगी की राहें खोल दी उन्होंने। तो सबसे पहले एक बढ़िया वाला गाना सुन लेते हैं, मेरा और आपका सबका पसंदीदा गाना ये। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद होगा, मुझे बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगता है, कभी भी सुनवा लीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और मुझे लगता है कि इस गाने को उदित नारायण साहब के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। कोई गाता भी है तो वो उदित नारायण के आसपास पहुंच भी नहीं पाता। तो आनंद मिलिंद मजरूह सुल्तानपुरी और उदित नारायण साहब को सलाम ठोकते हुए शुरू करते हैं आज का हम ये बेहद खूबसूरत सफर। आप भी अपने किस्से जो पिता से रिलेटेड हो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर, मैं इंतजार करूंगा। समर है मेरा नाम, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम। आई डोंट नो मैं कितना सक्सेसफुल हूं, लेकिन मैं आपके साथ रहता हूं तो मेरा दिल प्यार से भरा रहता है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: a son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
1: वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आप मेरे यानी समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला रेडियो मस्ती 24/7 लाइव बढ़िया साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर का खास तौर से एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009। और आज हम पिताओं को डेडिकेट कर रहे हैं अपना ये मस्ती गीत माला। पिता ज्यादातर बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं, एक रोल मॉडल, कहीं ना कहीं वो उन्हें प्रभावित करते ही हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बेहतर क्या मिसाल होगी, जिन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर चिट्ठियां लिखी। इन खतों में आदमियत का एक बेहद खास सबक मिलेगा। एक अंश आपको सुनाता हूं जिसे मुंशी प्रेमचंद ने ट्रांसलेट किया। मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, आई गेस पुराने सभी लोग उन्हें जानते होंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या लिखा। नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वो एक साथ हजारों अंडे देती है लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती, वो अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। लेकिन ऊंचे दर्जे की

जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी अंडे देती है, उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वो कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है। अब तुमको ये भी मालूम हो गया है कि जानवर जूं-जूं तरक्की करते हैं वो अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने बच्चे जनते हैं जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको ये भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम सब ऊंचे दर्जे के जानवर हैं और एक फैमिली में रहते हैं जहां बहुत सारा प्यार होता है और पिता हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। तो बॉलीवुड के ऐसे पिताओं की कहानी कहेंगे आज, मगर एक छोटे से ब्रेक के पार। और उससे पहले एक बेहद खूबसूरत गाना फिल्म राजी से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को समर्पित। आपको बता दूं कि इंदिरा जी कहती थीं कि अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं होती तो वो फिल्मों में होती। चलिए सुनते हैं ये गाने और फिर लौट कर आते हैं बॉलीवुड के पिताओं की कहानी में कहूंगा आज आपसे। और अगर आप अपनी कहानी कहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहिए।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है. बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे. ट्यून इन टू
3: रात अकेली है, जोश में रहो.
4: असम्स फर्स्ट हीरो एंड डॉटर्स फर्स्ट लव. रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द डैडीज अ वेरी हैप्पी फादर्स डे. जोश में रहो.
2: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की ये महफिल है, नाम है जिसका मस्ती गीत माला, जो आज पिताओं को समर्पित है. पिता कितना जरूरी होता है, ये बात आप तब समझ सकते हैं जब वो आपके सपनों में आपके साथ हो. आप अपना सपना पूरा करने की राह पर जाना चाहें तो वो आपको रोके नहीं, बल्कि उस राह पर जाने का हौसला दे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक सशक्त अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी जी. वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सपने अपने पिताजी से कह दिए थे. पिता ने उन सपनों को कुचला नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए पंख सिल दिए ताकि वो दूर तक उड़ सकें, ऊंचे उड़ सकें. वो बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली चले आए और दिल्ली से मुंबई, क्योंकि उनकी पीठ के पीछे पिता का मजबूत कांधा था जो उनके पीछे आती हर मुसीबत के लिए ढाल बना था. पिता जो अपने बच्चों को कर्ज के रुपयों से पढ़ाता था, उसने अपने बच्चों को सपने पूरे करने की इजाजत भी दे दी. उन्होंने ही सिखाया था कि सपनों को कभी मरने मत दो. इसीलिए मनोज बाजपेयी जी ने अपने सपनों को बचाया. आज बड़े होने पर भी अपने सपनों के लिए वो चल रहे हैं. जब उनके पिता छोटे थे तो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अपने बच्चों के सपने पूरा करने के लिए जो भी वो कर सकेंगे करेंगे. उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था ताकि बच्चों के सपनों की राह में पैसों की तंगी ना आए. एक दफा छुटपन में मनोज बाजपेयी जी ने देखा कि कोई आदमी घर पर आया है और पिताजी नहीं चाहते थे कि बच्चों को मालूम हो कि वो कौन है. लेकिन मनोज बाजपेयी जी को पता लग गया कि ये लोन की रिकवरी करने वाला आदमी है, तो मनोज जी ने खुद उनको उस आदमी से छिपाया. अच्छा, उनके पिताजी को फिल्में देखने का बहुत शौक था. वो उन्हें नजदीक के शहर बेतिया ले जाते थे, तो ये जाहिर था कि मनोज जी के अंदर भी फिल्में देखने का शौक और उनमें काम करने का सपना यहीं से जन्मा होगा. ये होता है पिता का प्रभाव. और भी कुछ ऐसे पिताओं की बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद. गाना अकेले हम अकेले तुमसे, आई लव यू डैडी. और आप कुछ कहना चाहते हैं ऐसा ही तो आकर जरूर कहिए हमारे फेसबुक पेज पर, मैं इंतजार कर रहा हूँ. मेरा नाम है समर. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला.

0: Guns don't kill people. No, no, no, no. Dads with pretty daughters, they definitely kill people.
1: Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. Josh mein raho.
2: हाँ जी नमस्कार, वेलकम बैक। ब्रेक के इस पार समय फिर से कर रहा है आपका स्वागत दोनों बाहें फैलाकर। अब मैं बॉलीवुड के एक ऐसे फादर एंड सन की जोड़ी की बात करने जा रहा हूँ जो हालात के चलते एक दूसरे से अलग गए। बच्चा अपने पिता से खफा भी रहा मगर उनसे खूब प्यार भी करता रहा। वो बच्चा ऐसा था जो अपने पिता के साथ शहर दर शहर ट्रेवल किया करता था क्योंकि उसके पिताजी एक फिल्मी कलाकार और मंच के अभिनेता भी थे, थिएटर किया करते थे। तो जब भी पिता की दूसरे किसी शहर में शूटिंग होती तो वो उनके साथ साथ रहते और स्टेज परफॉर्मेंसेस के दौरान भी स्टैंड बाय आर्टिस्ट के तौर पर हमेशा खड़े रहते। जब भी कोई एक्टर बीमार हो जाता या किसी को कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती तो नकली मूछें लगाकर स्टेज पर भेज दिया जाता उन्हें, चाहे डायलॉग याद हो या ना हो। जानते हैं बच्चा कौन था? ये थे परीक्षित साहनी। और जानते हैं इनके पिता कौन थे? बताने की जरूरत नहीं है। लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी साहब, मशहूर फिल्म कलाकार। हालांकि बलराज साहनी साहब की पत्नी की परीक्षित साहनी के बचपन में ही डेथ हो गई थी तो उनकी माँ का साया उनके साथ नहीं था और इसी वजह से उन्हें अपने पिता से भी दूर रहना पड़ा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो कभी बोर्डिंग स्कूल में, फिर वो डायरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग का कोर्स करने रूस चले गए। उसके बाद बलराज साहनी साहब के पास रहने को चले आए मगर तब तक पिता और बेटे में बहुत दूरियां बन चुकी थीं। हालांकि बलराज जी के पास तब पैसा था, रुतबा था, उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने घर में अच्छा कमरा बनवाया था, एक स्पेशल रूम जहां वो पेंट कर सकें, डार्क रूम भी था जहां वो अपने फोटोज डेवलप कर सकें, एक बहुत बड़ी बैल्कनी जहां वो जिम कर सकें। बलराज साहनी उनसे कहते थे कि मेरे साथ दोस्ती रखो यार, डोंट ट्रीट मी लाइक योर फादर, क्योंकि परीक्षित साहनी उनसे बात नहीं करते थे। मगर पिता के भीतर जो कलाकार था वो उनके भीतर भी कहीं ना कहीं था ही। तभी तो उन्होंने फिल्म की अनोखी रात और इसके बाद फिल्म बनाई भी पवित्र पापी। लेकिन ये बात है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनको बलराज जी के बराबर का एक्टर बनना है क्योंकि वो मानते थे कि वो कभी उनकी तुलना नहीं कर सकते, उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा भी था एक दफा कि इट्स बेटर टू बी अ फर्स्ट रेट परीक्षित देन अ थर्ड रेट बलराज। बलराज जी ने भी कभी नहीं चाहा कि वो एक्टर ही बने, न प्रेशर डाला किसी भी तरह का। मैं ये कहूंगा कि प्यार तो पिता पुत्र के बीच यहाँ भी था मगर थोड़ा सा अनबोला। ये बात अलग है कि बचपन में अपने पिता की शूटिंग के दौरान एक सीन पर फूट फूट कर वो रो पड़े क्योंकि शूटिंग देखने आई भीड़ उनके पिता पर बहुत ही खराब कमेंट्स कर रही थी। बलराज साहनी कम्युनिस्ट थे तो उनका विरोध हुआ करता था। खैर साहब, जो भी हो, फादर और सन के रिलेशन में अगर कुछ अनकहा हो तब भी प्यार तो होता ही है, रिश्ता तो यही है, रिश्ते प्यार से बनते हैं। तो चलिए इसी बात पर आपको और हमारा ये रिश्ता यूं ही कायम रहे, ये प्यार यूं ही बना रहे, इन बेहतरीन गानों को आपके सामने पेश कर देते हैं। इन्हें सुन लीजिए और वापस लौटकर जरूर आइएगा। कुछ अपने पिताजी के बारे में कहना चाहें तो जरूर कहिए। आज हमारा फेसबुक पेज लोडेड है इस तरह के मैसेजेस से, इंतजार रहेगा आपके मैसेज का भी।

हेलो जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल ब्रेक के इस पार्ट ढेर सारी और बातों के साथ हाजिर हूँ मैं समर। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड में जिन जिन कलाकारों ने पिता की भूमिका निभाई उनमें कुछ खास कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है या कौन सा याद रह जाता है या आपको लगता है कि यार ऐसे होने चाहिए पापा। अगर मेरी बात करें तो मुझे दो रोल बहुत अच्छे लगते हैं पिता के किरदार के। एक तो है दिल है कि मानता नहीं के फिल्म वाले डैडी, पूजा भट्ट के डैड, और दूसरा फिल्म डैडी वाले डैडी। और सबसे बड़ी बात ये दोनों ही किरदार एक ही कलाकार ने निभाए और वो है अनुपम खेर। अच्छा यही नहीं, अनुपम खेर का वो रोल कैसे भूल सकते हैं हम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला। देखा जाए तो ही इज मच लव्ड डैड। हम आपके हैं कौन, विवाह कुछ कुछ होता है, और फिल्म क्या कहना के डैडी। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की माँ अगर निरूपा रॉय हैं तो पिता अनुपम खेर को बना देना चाहिए। अनुपम खेर एक बेहद शानदार पिता हैं भी रियल लाइफ में। उनके बेटे हैं सिकंदर खेर, हालांकि वो भी एक्टर हैं, लेकिन अनुपम खेर उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लेकिन सिकंदर के अनुसार अनुपम इज बेस्ट डैड, अनुपम जी के लिए सिकंदर इज बेस्ट सन। और सिकंदर जी की माँ किरण खेर जी के अनुसार अनुपम जी के अलावा अगर कोई और होता तो वो सिकंदर को संभाल नहीं पाता। जब किरण जी ने अनुपम जी से शादी की तब सिकंदर सिर्फ 3 साल के थे, बहुत ही रेबेलियस बच्चे, फन लविंग थे। सिकंदर के लिए तो बहुत ही कोमल मिजाज के पिता, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया कभी, मगर जरूरत पड़ने पर एक स्ट्रॉन्ग फादर के तौर पर खड़े रहे उनके साथ। सो यहाँ वो भी एक बहुत अच्छा डैड बनते हैं। कहने को दुनिया उनको स्टेप फादर कहती है, पर दुनिया का क्या, कहती है तो कहती रहे। सो बेस्ट डैड अवार्ड गोज टू अनुपम खेर। उनके लिए गाना डेडिकेट कर देते हैं, सुनिए मासूम से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। और अगर आप भी मुझसे हैरान हैं, परेशान हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं इस शो के बारे में तो जरूर कहिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फादर स्पेशल मस्ती गीतमाला।

मैं हूँ एक बार फिर से आपका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करता हुआ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव के स्टूडियो से। वैसे एक बात तो है, पिता जो भी सिखाते हैं उसे सिखाने का तरीका बहुत ही जुदा होता है, अलग होता है, समय से परे सीख दे देता है। एक वाक्य मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। पापा मुझे हॉस्टल में छोड़ने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। पैसेंजर्स में से किसी एक ने मैथ्स की एक रिडल सॉल्व करने को दी। पापा ने उसे चंद पलों में कर दिया। इतने में हमारा स्टेशन आ गया, हम लोग उतर गए। 5-6 रोज बाद मेरे नाम मेरे पापा की चिट्ठी आई। मैं हॉस्टल में था ना, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रेन में पूछे गए सवाल को इन तरीकों से भी हल किया जा सकता है। वहाँ 6-7 तरीके लिखे हुए थे। मैं आंखें और मुंह फाड़े कभी चिट्ठी को कभी कमरे की छत को देखता रह गया। हमारे पिताजी इतने खतरनाक मैथमेटिशियन हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा उनके बारे में। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले बॉलीवुड के उन फिल्मी पिताजियों की बात कर रहे थे जिनके किरदार भुलाए नहीं भूलते हैं हमें। अमरीश पुरी साहब को कोई कैसे भूल सकता है। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, क्या सही किरदार था। और संस्कारी बापू आलोकनाथ जी, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, विवाह। और फिर अमिताभ बच्चन, कभी खुशी कभी गम के पिताजी, हार्ट टू ब्रेक। अमिताभ बच्चन साहब के रियल लाइफ सन अभिषेक बच्चन एज हिज फादर इन फिल्म पा, कितना अच्छा रोल निभाया है। और अमित जी के रियल लाइफ सन शाहरुख खान खुद एक बहुत बढ़िया डैड बने, एकदम कूल डैड। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो सोचा था कि इतने कूल और यंग डैड भी होते हैं क्या। अच्छा चलिए, इसी बात पर आपको एक गाना सुना देते हैं, हानिकारक बापू फ्रॉम दंगल। और हाँ, इस फिल्म में जो आमिर खान ने डैड का किरदार किया है उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले डैडी जो अपनी बेटी को जिताने को जितनी भी मेहनत चाहिए करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसे गोल्ड जिताना है तो जिताना है, उसके टारगेट तक उसे पहुंचाना है, उसका गोल अचीव करवाना है। तो चलिए सुनते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के उस पार। अभी दो और डैडी की हम करेंगे बात।

आपको एक बेहद भोला सा वाकया सुनाता हूँ। एक कतार है टेढ़ी मेढ़ी, बहुत मासूम कतार। कोई नाक खुजा रहा है, कोई बालों में हाथ फिरा रहा है, किसी की स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट निकर से बाहर निकल आई है, किसी ने मुंह फुलाया हुआ है, कोई खिलखिलाता है, कोई कानाफूसी करता है। जगह है बॉम्बे का जानकी कुटीर। बापू यानी महात्मा गांधी इन सब से मिलने वाले हैं। अंदर से आदेश आया और ये पंक्ति आगे बढ़ी। हॉल में बापू बीचों बीच बैठे हैं, बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। बापू सब बच्चों के सिर पर हाथ फिराते हैं, फिर एक प्यारे से गोलमटोल बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं और उससे गुजराती में पूछते हैं, तुम्हारो नाम शू छे, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा अपनी टूटी फूटी गुजराती में बोलता है, मैं मुमताज अली का बेटा। गांधी जी ये सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। वो मुमताज अली को जानते थे, जो एक बहुत अच्छे एक्टर थे। बापू बोले, ठीक है बेटा, तुम जब बड़े आदमी बन जाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे। जानते हैं बच्चा कौन था? बॉलीवुड अभिनेता महमूद। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि महमूद हूं तो कौन मुझे पहचानेगा, पिता को तो सब जानते ही हैं। इसलिए सबके बीच शेखी बघारने के लिए बोल दिया, मैं मुमताज अली का बेटा हूं। सही बात भी है। ये बात अलग है कि जल्दी ही मुमताज अली को सब भूल गए और महमूद आज भी सबको याद है। वक्त वक्त की बात। वैसे हर पिता चाहते हैं कि उन्हें उनके बेटे के नाम से जाना जाए। चलिए यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे मुलाकात होगी। गाना आ रहा है आपके लिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा एक फूल दो माली से, और उसके बाद मैं आ रहा हूं इन बेहतरीन गानों के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ मस्ती गीत माला फादर्स डे स्पेशल।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: A son's first hero and a daughter's first love. Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day.
6: पिता छोटी छोटी सी मांगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। वो ना में छिपी हुई एक हाँ है, आपकी पहचान है। एक पोएट ने लिखा है, मैं हूँ कि चिंता करता हूँ, व्याकुल होता हूँ, झुकता हूँ, समझौते करता हूँ, हाथ पैर में दर्द से कराहता हूँ, पिता की तरह खांसता हूँ। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका हमराही समर। अच्छा, बॉलीवुड में ऐसा बहुत होता है कि फादर अपने बच्चों को लॉन्च कर देते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि पिता के विरसे को बच्चे संभाल पाए। एक दौर था जब 3 स्टार किड्स एक साथ फिल्म्स में आने वाले थे, और ये थे राजेंद्र कुमार साहब के बेटे कुमार गौरव, धर्मपाजी के बेटे सनी देओल और सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त। तीनों की फिल्म्स लगभग साथ साथ शुरू हुई, लेकिन उस वक्त कंट्रोवर्सी भी हुई। मसलन राजेंद्र कुमार साहब ने चुना डायरेक्टर राहुल रवेल को डायरेक्शन के लिए, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे को वो ठीक से निर्देशित करें, अच्छा लॉन्च पैड दें। दोनों यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच इतने मतभेद हुए कि राहुल रवेल फिल्म से अलग हो गए और वो गए धर्मपाजी के बेटे सनी की फिल्म बेताब को डायरेक्ट करने। अच्छा, इधर जो कुमार गौरव की फिल्म की एक्ट्रेस थी विजेता पंडित, वो एक रोज पहुंच गई संजय दत्त की फिल्म रॉकी की लॉन्चिंग पार्टी में। राजेंद्र कुमार साहब इस बात से इतने खफा हुए क्योंकि राजेंद्र साहब ये नहीं चाहते थे कि वो वहां जाएं। वो अपनी हीरोइन को किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते थे, वो किसी दूसरे कैंप के साथ घुले मिले ये उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरा। अच्छा, बदले में विजेता ने भी दोस्ती निभाते हुए संजय दत्त को लव स्टोरी के मुहूर्त पर इन्वाइट कर लिया, लेकिन संजय दत्त वहां नहीं आए। उस वक्त के मीडिया ने इस बात पर ये अटकलें लगाई कि संजय दत्त राजेंद्र कुमार से डरते हैं या उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब ही वो शख्स थे जो संजय दत्त को रिहैब लेकर गए थे रिहैब सेंटर, उनकी ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए वही आगे आए थे। वेल, सबसे मजेदार तो ये बात थी कि कुमार गौरव ने शादी भी की तो किससे, संजय दत्त की बहन नम्रता से। जो भी हो साहब, बॉलीवुड का ये ट्रेंड है, बेटे को उसके पिता लॉन्च कर ही देते हैं, लेकिन वो चलेगा या नहीं ये पब्लिक डिसाइड करती है। चलिए, मैंने आपकी बहुत सारी जानकारी बढ़ा दी है, मुझे ऐसा लगता है अब इन गानों को भी सुन लीजिए, आपको मजा आएगा और मैं भी लौट कर आऊंगा, मेरी बातें सुनकर भी शायद आपको मजा आए, और अगर आए तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें जरूर बताएं।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: Guns don't kill people. No, no, no, no. Dads with pretty daughters, they definitely kill people.
1: Radio Masti 24/7 wishes all the daddies a very happy Father's Day. जोश में
2: रहो। बॉलीवुड में कितनी ही फेमस फादर सन या फादर डॉटर की जोड़ियां हैं, जैसे रणधीर कपूर, करीना, करिश्मा, जितेंद्र और एकता कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र और सनी देओल, पंकज कपूर, शाहिद कपूर, सलीम खान, सलमान खान, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन। ऑल इन ऑल राज कपूर और उनके बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर की जोड़ी, राजीव कपूर की पूरी टीम, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। बच्चे ही उनकी फिल्मी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। गुलजार साहब और उनकी बेटी बोस की, जावेद अख्तर और फरहान एंड जोया अख्तर ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ एक बात और याद आई जो मैंने पहले भी कहा है कि कभी कभी बच्चा किसी बात पर अगर पिता से खफा हो भी जाए तो प्यार तो कम नहीं होता ना, रिश्ता ही ऐसा है। जावेद अख्तर साहब अपने पिता जानिसार अख्तर साहब से बेइंतहा नाराज थे, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे जाकर वापस न उनकी माँ का न उनका हालचाल पूछा, लौटे ही नहीं। जावेद अख्तर और उनके भाई सलमान अख्तर पर इसका बहुत असर पड़ा, काफी कड़वाहट सी रही लोगों के बीच। साफिया यानी जावेद अख्तर साहब की मम्मी बेवक्त ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जावेद और सलमान कभी अपनी खाला, कभी नानी के घर पर अजनबियों की तरह ही रहे। वेल, अपनी किताब तर्कश में जावेद अख्तर साहब ने लिखा, 18 अगस्त 1976 को मेरे बाप की मौत होती है। मरने से 9 दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी किताब ऑटोग्राफ करके दी थी। उस पर लिखा था, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगे। शायद इसके बाद जावेद साहब के दिल से कुछ कड़वाहट कम हुई, क्योंकि उनको लगा कि आखिर ये जो शायरी है वो मिली तो उनको विरासत में, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है पिता से, डीएनए ही से। जावेद साहब का तो बचपन का नाम जादू भी इनके वालिद ने ही दिया था। चलिए वालिद के नाम एक और गाना हो जाए, पापा की परी हूं मैं, फ्रॉम फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं और मैं आपका दीवाना हूं। अगर आप यूं ही मुझे प्यार भेजते रहेंगे, और नहीं भेजेंगे तो भी दीवाना तो मैं बना रहूंगा, क्योंकि मैं मस्ती पर हूं, मस्ताना हूं, आप लोगों का दीवाना हूं। अपना प्यार यूं ही हमें भेजते रहिए। आज की आखिरी मुलाकात के लिए बस थोड़ी देर में मिलिएगा।
3: Himself a wife.

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेल, चलते चलते देखिए आखिरी पड़ाव भी आ गया। कितना कुछ है कहने को पिता पर, मगर एक एपिसोड में इसे समेट पाना नामुमकिन है। पिता विस्तार है, उतना बड़ा विस्तार जिसमें आपका पूरा वजूद छुप जाएगा। अच्छा, ट्विटर पर किसी ने अपनी बायो में लिखा, सन ऑफ अ फेमस फादर, फादर ऑफ अ फेमस सन, आई एम जस्ट हाइफन इन बिटवीन। ऋषि कपूर साहब ने लिखा था ये अपने ट्विटर हैंडल पर, राज कपूर साहब के बेटे और रणवीर कपूर के पिता। अगर हम ऋषि कपूर साहब की बात करें तो उनके ऊपर उनके पिता, उनके पापा के ऊपर उनके पापा का हाथ था, हाँ जी, पृथ्वीराज कपूर साहब का। लेकिन राज कपूर साहब ने हमेशा खुद के बल पर आगे बढ़ना सिखाया बच्चों को, कभी बच्चों को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, बल्कि काम सीखने को कहा हमेशा पहले। ऋषि कपूर साहब को लॉन्च जरूर किया राज कपूर साहब ने, मगर इसलिए नहीं कि वो उनके बेटे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक टीन यंग लव स्टोरी बनाना चाहते थे और किसी बहुत बड़े एक्टर को कास्ट करने जितना पैसा नहीं था उनके पास, बजट बहुत ही लिमिटेड था। अच्छा, और भी बहुत कुछ सिखाते रहते थे वो। फिल्म बॉबी की शूटिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले गाना शूट होना था, मैं शायर तो नहीं, ऋषि जी तैयार हुए बड़ी खुशी खुशी, इंतजार करते कि भैया अब कोरियोग्राफर आएंगे, स्टेप्स बताएंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं, इंतजार खत्म हो गया। और आया कौन? पिताजी, यानी कि राज कपूर साहब जरूर आ गए। ऋषि अपने पिता को डैडी, पापा या ऐसा कुछ नहीं कहते थे, वो अपने पापा को साहब कहकर पुकारते थे। तो ऋषि ने खुद ही आकर पूछा, साहब कोई कोरियोग्राफर नहीं आया? राज कपूर साहब ने कहा, उसकी क्या जरूरत है, कोई आएगा तो मैं अपनी नकल करवाएगा और उसी ने बाकी हीरोज को भी सिखाया होगा, तो तुम भी उसी लाइन में सवार हो जाओगे। अपना खुद का कुछ करो और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ। और पिता की सीख को माना ऋषि कपूर साहब ने और एक बेहतरीन अभिनेता बनकर दिखाया। अब और क्या लिखूं पिता के लिए कुछ और, बस यही कहना चाहूंगा, सब अपने अपने पापा को एक जोर से टाइट हग दीजिएगा और उनको कह दीजिएगा, आई लव यू पापा। हालांकि लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं भी करूंगा आज। फिलहाल आपके लिए फादर्स डे पर कुछ और गाने आ रहे हैं, सुनिए उन्हें और इजाजत दीजिए मुझे, आपसे एक नए एपिसोड में मिलूंगा। तब तक करते जाइए कुछ वादे, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल, किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Raat akeli hai,
1: aankhon mein aansu. Raat akeli hai to kya, hum to

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
0: Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aapke

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: Oh yeah, it's the one that we're not saving, y'all.

धड़क धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमके वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थे और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। दुश्मन

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: सब लोग जिधर वो हैं, उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं दिले बिस्मिल का तड़पना, कुछ गौर से कातिल की नजर देख रहे हैं। मैं दाग हूं, मरता हूं इधर, देखिए मुझको, मुंह फेर कर ये आप किधर देख रहे हैं।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पे एक थॉट ऑफ द डे पढ़कर मुझे मोटिवेशन नहीं बल्कि हंसी आ गई। उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? कर भला तो हो भला। हाँ जी। सो कलयुग में किसी का भला करके आपका भला हुआ है? जरा बताइए। देखो लोग कह तो देते हैं कि करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो भाई फल की चिंता तो नहीं कर रहे हैं, बट किसने देखा कि अगला जन्म मिल रहा है कि नहीं, तब सुख मिलेगा या नहीं। ओ माय गॉड, सुबह सुबह इतना सारा ज्ञान मिल जाता है ना, या तो उस पर एक्सट्रीम बिलीव हो जाता है या बिलीव उठ जाता है। मीनवाइल मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: रहो। कैसा लगेगा कोई आपके घर में झाके, आपके रूम से लेकर आपके अलमीरा से लेकर आपकी बालकनी से लेकर आपके वॉशरूम से लेकर आपके किचन से लेकर क्या कुछ नहीं देखे, और सोचो ये सारी चीजों में दिलचस्पी पूरी दुनिया ले रही हो तो कैसा होगा। बाय द वे इट्स अ न्यू ट्रेंड। अभी रिसेंटली तमन्ना भाटिया ने भी अपना लग्जूरियस सी फेसिंग मुंबई अपार्टमेंट एक शो में एक व्लॉग में दिखाया, प्राइवेट जकूजी से लेकर वॉक इन क्लोजेट से लेकर क्या कुछ वहां पे नहीं था। एंड मुझे लगता है कि आपको इस तरह के वीडियोस देखने भी चाहिए बिकॉज मोटिवेशन मिलता है यार, मोटिवेशन मिलता है कि यार सेलेब जैसी लाइफ अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज से ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर मजेदार गाने लगा रही है। मीनवाइल इतनी ही आपको सुविधा मिल सकती है मेरी तरफ से। डोंट गो एनीवेयर।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: एक जबरदस्त कहानी है
5: और टाइटल क्या है फिल्म का
4: वेलकम टू द जंगल
6: एक्शन कॉमेडी केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट
7: दिशा पाटनी जैकलिन फर्नांडिस
6: From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
8: Welcome to the jungle!
6: Hurry, book your tickets now! Welcome to the jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
9: Trailer khatam, paisa hajam.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: बैठे बैठे क्या करें, ऐसा कीजिए घर की ग्रोसरी ऑर्डर कर दीजिए। अब अंताक्षरी तो वो बाद में खेलेंगे, पहले ग्रोसरी मंगवाइए, स्नैक्स बनाइए, फिर इनविटेशन दीजिए। हाँ, सो ए टू जेड ग्रोसरी से जुड़ा हुआ सारा सामान घर पर आ सकता है ggmartonline.com से। मीनवाइल आपको एकदम इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक नट्स चाहिए, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताचियोज चाहिए, हेजल नट्स चाहिए एंड प्रीमियम सॉल्टेड कैश्यूज चाहिए, कैलिफोर्निया आमंड्स चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। प्लस माउथ फ्रेशनर की तरह आप गुलकंद भी मंगा सकते हैं। और कुछ चटपटा खाते हैं, जामुन फ्लेवर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो जामुन ट्राइंगल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक काइंड ऑफ स्टफ के लिए जस्ट लॉग ऑन ggmartonline.com। मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Singapore, prepared for impact.
3: 3, 2, 1.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर। देखो किसी से भी लड़ाई कर लो ना, अपनी बीवी से मत करो, क्योंकि बीवी जब बाहर निकलती है ना तो बहुत सारे राज खोल देती है। और मैं ऐसा क्यों बोल सकती हूँ? अरे भाई मैं ऐसा एग्जाम्पल के साथ भी बोल सकती हूँ। अब गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा को ही ले लीजिए। हाँ जी, रिसेंटली उनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो हमने सोशल मीडिया पे बहुत देखी, लेकिन अब ये भी निकल कर आया है कि उन्होंने अपने हस्बैंड यानी गोविंदा के लिए कह दिया है कि इनके कोई बाल वाल नहीं है, ठीक है, ये हेयर पैच यूज करते हैं। बताओ यार, घर की बातें ऐसे बाहर निकल कर आएगी तो क्या होगा, बड़ी गलत बात है। एनीवेज मैं आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.